श्रोता साथियों, इस प्यारे से गीत की बात बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमारे बीच आ चुकी है मलियाना सरधाना मेरठ से। फिल्म का नाम है प्रेम रोग, गीत के बोल ही भवरी ने खिलाया फूल। इस गीत को आवाज दी है लता मंगेशकर जी ने। इस गीत के अनुरोध करता है अनिल जैन, जैन साहब, सीएम जैन, मुस्कान जैन, मास्टर जीवीएम जी जैन। और भी श्रोता साथी जुड़ना चाह रहे हैं खड़वा मध्य प्रदेश से, बेबी सालिया डावर, बेबी आयशा डावर, बेबी जेकरा खत्री जी। इस गीत के अनुरोध करता है धनुरी तेलीवाला से निसार सलमानी, नौसाद सलमानी, बेबी आलिया, आयन बाबू। इसी बीच जुड़ना चाह रहे हैं अकोट से विनायक भेंडी, श्रीमती मंगलाजी भेंडी, विजय शुभम जरिए, पवन जरिए और सजीव जी। इस गीत के अनुरोध करता है एकता कॉलोनी रोहतक हरियाणा से सीताराम कंगड़ा, बबीता बोट, निखिल जी और तन्वी जी। इसी बीच जुड़ना चाह रहे हैं जाकुट राजस्थान से शंभुजार खटक, विमला देवी, अमरजीत खटक, सुंदरलाल खटक, योगेश कुमार खटक, दीपक कुमार खटक, कुमारी पूजा जी खटक। इस गीत के अनुरोध करता है सरगांव छत्तीसगढ़ से दीपेश वर्मा, पूनम वर्मा, ज्योति वर्मा, शिवांशी वर्मा। तो आइए श्रोता साथियों सुनते हैं फरमाइश की इस गीत को। फिल्म का नाम है प्रेम रोग, गीत के बोल ही भवरे ने खिलाया फूल। इस गीत को आवाज दी है लता जी ने। तो आइए साथियों सुनते हैं श्रोता साथियों की फरमाइश की इस गीत को। तब तक आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में वाघ रेडियो 90.8 FM पर।

श्रोता साथियों, इस प्यारे से गीत की बात बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमारे बीच आ चुकी है भागपत यूपी से। फिल्म का नाम है क्रांति, गीत के बोल ही जिंदगी की ना टूटे लड़ी। इस गीत की फरमाइश करता है आसिफ अली खान, मुमिना नाज, मुस्काफ अली खान, सादिक अली खान, सारिक अली खान जी। और भी श्रोता साथी जुड़ना चाह रहे हैं कोपरगांव से, सुरेश मालोदी, वर्षा मालोदी, श्रद्धा मालोदी, मानसी जी मालोदी। इस गीत के अनुरोध करता है पंजाब से बब्बल मल्होत्रा, ओम प्रकाश मल्होत्रा जी। इसे भी जुड़ना चाह रहे नेपानगर मध्य प्रदेश से सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रकर शाह, कुशल शाह, नितिन शाह, शुरबी शाह, अश्वन शाह, मंगलाबेन शाह और राजेंद्र जी शाह। रघुवीर नगर दिल्ली से जुड़ना चाह रहे हैं दिलावर खान, हसीना बानू, एलिसा नायब और लड्डू जी। नरगोड़ा छत्तीसगढ़ से जुड़ रहे महाराज कीर्तनपुरी गोस्वामी, लक्ष्मण देवी गोस्वामी, जोगेशपुरी गोस्वामी, टिंकल डिंपल, मीनाक्षी निशा, दिशाजी गोस्वामी। तो आइए साथियों सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को, गीत की बोल ही जिंदगी की ना टूटे लड़ी। तब तक आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में, आपके अपने साथी मनीषा पटेल के साथ में।

आइए दोस्तों इस गीत के बाद बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमारे बीच आ चुकी है गंजरवारा से। फिल्म का नाम है विजय पद, गीत के बोल ही राहों में उनसे मुलाकात हो गई। इस गीत की फरमाइश करता है शमशुल कमर राही, साइन फातिमा, अजनान खान, फिजाद खान, अनु खान, उस्माद अंसारी, कलीम जी अंसारी। और भी श्रोता साथी जुड़ना चाह रहे, बिलासपुर छत्तीसगढ़ से गुणवत श्रीवास, श्रीमती करुणा श्रीवास, आयुष श्रीवास, विवेक जी श्रीवास, बेबी आयुष श्रीवास। बेलतारा छत्तीसगढ़ से जुड़ रहे हैं मोहन सिंह राज, अनिता राज, सुमी सोमो और मानस जी राज। इसे भी जुड़ना चाह रहे हैं खड़वासी अब्दुल गफा डावर जी, अब्दुल हक डावर जी, जिया हक डावर जी, मोहम्मद उमर डावर जी। भाटापारा छत्तीसगढ़ से जुड़ रहे हैं सोहन जोशी। इस गीत के अनुरोध करता है मजनू का टीला से कमल बालूजा, मधु बालूजा, सागर बालूजा। सदाना एमपी से जुड़ना चाह रही हैं उमंग मलिक, आकांक्षा मलिक, माहीजी मलिक। इसे भी जुड़ना चाह रहे हैं भागपत से जगमोहन सिंह प्रजापत, श्रीमती मुनेश देवी, अर्जुन भारती, बिटिया अंजलि, नितिन जगमोहन, सुधीर न्यूतन, प्यारी पोती भुवनेश्वरी देवी। इसे भी जुड़ना चाह रहे हैं छत्तीसगढ़ से राम मानकर, सुरभि जी और केदार जी। तो आइए साथियों सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को, गीत के बोल ही राहों में उनसे मुलाकात हो गई। तब तक आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में वाघ रेडियो 90.8 FM पर।

आइए साथियों इस प्यारे से गीत की बात बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमारे बीच आ चुकी है महाराष्ट्र से। फिल्म का नाम है दुल्हन, गीत के बोल ही ले जा लेते आए हमें तुम्हारे गांव में। इस गीत की फरमाइश करता है रुपेश संगई, महेश संगई, ब्रजेश संगई, प्रतेश संगई और संगई परिवार के सभी सदस्यगण जुड़ रहे हैं। इसे भी जुड़ना चाह रहे नाथुरासी संतोष, उषा और अभिषेक जी। इस गीत के अनुरोध करता है नवाशर पंजाब से गंगदीप थांती, तिप्ता कुमारी थांती, डॉक्टर प्रियंका थांती, डॉक्टर प्रशांत थांती, डॉक्टर प्रियम थांती, बेबी वामिका वानी जी थांती। कुमार गली कोलगांव से जुड़ना चाह रहे हैं पांडु चंदन, उषा चंदन, रानी चंदन, प्रतीक्षा चंदन, अभिषेक चंदन, सार्थक चंदन, प्रथमेश चंदन, संतोष चंदन, पांडुरंग जी कुंभार। इसे भी जुड़ना चाह रहे पथरोड से विजय अंबाटकर, सुनीता अंबाटकर, अक्षय अंबाटकर, राधिका अंबाटकर, ऋषिकेश जी अंबाटकर। और भी श्रोता साथी जुड़ना चाह रहे भाटापारा छत्तीसगढ़ से हीरा मणिवर्मा, पारस मणिवर्मा, पुष्पेंद्र मणिवर्मा, नोखीलाल जी वर्मा। झारखंड से जुड़ना चाह रहे मोहम्मद यासिन अंजान, साइना नवाज, हसन नवाज, बाबू अहमद, मिफ्रा नवाज, बेबी चाहत और सादिया जी। जनकपुरी सहारनपुर से जुड़ रहे जॉन डिकिस्टो, रोज डिकिस्टो, पल डिकिस्टो, विलिस डिकिस्टो। तो आइए श्रोता साथियों सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को। तब तक आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

श्रोता साथियों, अभी हमने बहुत ही प्यारा गीत सुना। गीत की बोल थी, ले तो आए हो हमें सपनों के गांव में। इस प्यारे से गीत के बाद बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमारे बीच आ चुकी है छत्तीसगढ़ से। फिल्म का नाम है फंटूज। गीत के बोल है, दुखी मन मेरे मेरा कहना सुन। इस गीत की फरमाइश करता है बलकरण वर्मा, अंजलि ज्योति वर्मा, प्रसाद राजेंद्र जी वर्मा। और भी श्रोता साथी जुड़ना चाह रहे हैं महाराष्ट्र से, सदैव दामोदर, शशिला दामोदर, सवेद दामोदर, साधना पावन दामोदर। इस गीत के अनुरोध करता है बुलंदशहर से मोहम्मद सहीद अब्बासी, निगत परवीन अब्बासी, सहनवाज अब्बासी, सरफराज अब्बासी, फुरुद्दीन अब्बासी, सुहान अब्बासी, अरजान अब्बासी, अबांची अब्बासी और अब्बासी परिवार के सभी सदस्यगण जुड़ रहे हैं। भीड़ शहर महाराष्ट्र से जुड़ रही नंदकिशोर घटी, संगीता घटी, साक्षी घटी, अंजलि करवा, बाल प्रसाद करवा, जयश्री मेलेत्री, रामनिवास अग्रवाल, धनजय बिट्टू, पीबी कुदलेश जी। और भी श्रोता साथी जुड़ना चाह रहे हैं श्रामपुर सी, डी अशोक कुम्भार, रविका जीविका, सोनू कुम्भार, अर्चना जी कुम्भार। पुनावली से जुड़ना चाह रहे हैं अजीत सोनू ने, करिश्मा सोनू ने, अविका सोनू ने, शायसा सोनू ने। नरवेल महाराष्ट्र से जुड़ रहे हैं पीएच निहावकर, निर्मला निहावकर, विशाल निहावकर। मलकापुर महाराष्ट्र से जुड़ना चाह रहे हैं नारायण इगले, सोपान इगले, आशीष मेहकर जी। कलानौर से जुड़ना चाह रहे हैं नरेंद्र शर्मा, किरण शर्मा, नितिन शर्मा, मयंक जी शर्मा। इसे भी जुड़ना चाह रहे हैं सदर बाजार मारवाड़ भिलाड़ा राजस्थान से रमेश चंद्र चौहान, जी नारायण चौहान, तरुण चौहान, प्रतीक जी चौहान। इस गीत के अनुरोध करता है श्रीरामपुर महाराष्ट्र से नाशिश शेख, नाजिया नाशिश, शाहिद शेख। अहमदनगर से जुड़ना चाह रहे हैं जुमेद मुजावर, सभिया मुजावर, मिखाइल जी मुजावर और जुमेद जी मुजावर। बक्सर बिहार से जुड़ना चाह रहे हैं सरफुद्दीन अंसारी, फातिमा खातून अंसारी, सुरित रमेश शाहू जी। बिहार से जुड़ना चाह रहे हैं डॉक्टर डब्ल्यू अंसारी, डॉक्टर सोनम अली बा, दानिश जी अंसारी। बाजार बक्सर से जुड़ना चाह रहे हैं श्रद्धानंद आर्य, अभ्यानंद आर्य, परमानंद आर्य। बक्सर से जुड़ रहे हैं राजे एडी अंसारी, फातिमा खातून अंसारी, इकबाल मस्ताब जी। बोरखेड़ा पित्रामल से जुड़ रहे हैं विनोद मुणत, नेहा जैन, दीपक मयंग मुणत, चेतन नहेटा, दीक्षा कोशजी पवार। लाहौरा से जुड़ना चाह रहे हैं डोमेंद्र नेताम, गणेश्वरी नेताम, चंचल नेताम, कामलेश नेताम, माहिर नेताम। जमशेदपुर से जुड़ना चाह रहे हैं हरजिंदर सिंह भाटिया, एंजल भाटिया, सोनू भाटिया, पप्पी भाटिया, तमन्ना जी भाटिया। नेहरू चौक पेठन से जुड़ना चाह रहे हैं डॉक्टर सुरेश यादव, अनिता जाधव, आरती पूजा, प्रशांत जाधव, सोनम जाधव, बीबी सिया जाधव। जलाना शहर से जुड़ रहे हैं सोमनाथ जाधव, गीता जाधव, ओम जाधव, शुभा जाधव, चंदन जी जाधव, एकता जी जाधव, संगीता जी जाधव। तो आइए श्रोता साथियों, सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को। तब तक आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में, आपकी अपने साथी मनीषा पटेल के साथ में।

आइए दोस्तों इस प्यारे से गीत के बाद बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमारे बीच आ चुकी है मस्तानपुरा से। फिल्म का नाम है सिर्फ तुम, गीत के बोल हैं एक मुलाकात जरूरी है सनम। इस गीत की फरमाइश करता है अनंता भगत, अरुणा भगत, चेतन भगत, सुलोचना जी भगत और भी सदर साथी जुन्नाचार्य गंजडवारा उत्तर प्रदेश से, मास्टर खिल्लू परवेज, बेगम इमरान नाज, नवाजिक शेख, दानिश शेख, अमन अफरीदी जी और राधा नामदेव जी और भी साथी जुड़ना चाह रहे हैं। अहमदनगर से नासिर हुसैन पटेल, अमीना जी पटेल। इस गीत के अनुरोध करता है बरेली से मोहम्मद यासिर अंजान, सईना नवाज, हसन नवाज, बाबू अहमद, मिफरा नवाज। बरेली से और भी श्रोता साथी जुड़ना चाह रहे हैं मोहम्मद आमिर अंसारी, शमशील अंसारी, नरसी अंसारी, शमा अंसारी, माहिनूर जी अंसारी और अंसारी परिवार के सभी सदस्यगण जुड़ रहे हैं। भोपालगढ़ राजस्थान से जुड़ना चाह रहे हैं धर्मेंद्र जी पा, कपिल जी पा, ईशान जी पा, पूजा परिहार जी। डाबकी रोड अकोला से जुड़ रहे हैं शशिला देवी मधुरकर, सदानंद मधुरकर, कुमार गौरव जी मधुरकर, आरव और अर्पिता जी। सिंधी बुजुर्ग महाराष्ट्र से जुड़ रहे हैं किशोर वड़तकर, शुभम वड़तकर। इस गीत के अनुरोध करता है अमरावती से श्याम की टी, वंदना की टी, भाविका जी की टी। इसी बीच जुड़ना चाह रहे हैं दुलापुर उत्तर प्रदेश से मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू सुरेश, राजपाच पंकज, काजल सीमा, मानवी तन्वी, मोहिनी ऋतिक, बलवीर सिंह जी। लोरमी चचेरी छत्तीसगढ़ से जुड़ रहे हैं कमलकांत मरावी, प्रमिला मरावी, नेहा मरावी, पुष्पराज मरावी, ऋषभ जी मरावी। दुरापुर उत्तर प्रदेश से जुड़ना चाह रहे हैं मोहम्मद फरमान, मोहम्मद सलमान, मोहम्मद इरफान, मोहम्मद इजदार, नरगिस जी खातून। वासिम महाराष्ट्र से जुड़ना चाह रहे मास्टर विठल सुरुषी, सुषमा सुरुषी, परिधि सुरुषी, मायरा जी सुरुषी। दादरी गेट भवानी से जुड़ना चाह रहे हैं कृष्णा मेहरा, कोमल मेहरा, किरण मेहरा, कपिल मेहरा, कुणाल जी मेहरा। कुंभार गली श्रीरामपुर से जुड़ना चाह रहे हैं अशोक दले, सविता दले, अनिकेत दले, रोहिणी दले, ऋषिकेश दले, जीविका दले, सानिका जी दले। पुनावली पुणे से जुड़ रहे हैं अजय सोनोने, करिश्मा सोनोने, अविका सोनोने, विशाखा सोनोने जी। पटियाकला दुर्ग से जुड़ना चाह रहे संजय कुमार शाहू, सुजिता शाहू, शशंक शाहू, सीमाजी शाहू। कुंडी सेंटर 5 सूर्यनगर जोधपुर राजस्थान से जुड़ना चाह रहे हैं रमेश चंद्र चौहान, मोहिनी चौहान, कल्पित चौहान, बेबी गर्वी, बेबी बॉय हिमांश जी। इसी बीच जुड़ना चाह रहे हैं हरिद्वार उत्तराखंड से ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही, मेराब जहां जी। तो आइए श्रोता साथियों सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को। फिल्म का नाम है सिर्फ तुम, गीत के बोल हैं एक मुलाकात जरूरी है सनम। तब तक आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में और सुनते रहिएगा साथियों आपका अपना सामुदायिक रेडियो वाग रेडियो 90.8 FM।

बाकी सब सवालों का पता नहीं, लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ जेके मैक्स पेंट्स, जेके मैक्स पेंट्स, खुशियों के रंग।

श्रोता साथियों, अभी हमने बहुत ही प्यारा गीत सुना। गीत के बोल थे, एक मुलाकात जरूरी है सनम। इस प्यारे से गीत की बात बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमारे बीच आ चुकी है मुरादाबाद से। फिल्म का नाम है बेताब, गीत के बोल ही जब हम जवा होंगे। इस गीत को आवाज दी है लता मंगेशकर जी ने और शब्बीर कुमार जी ने। इस गीत की फरमाइश करता है माया देवी, ऋतिक और अदिति जी का साना। और भी श्रोता साथी जुड़ना चाह रहे हैं टिकमगढ़ मध्य प्रदेश से, बजेंद्र विश्वकर्मा, तारा देवी विश्वकर्मा, सोनाली विश्वकर्मा, सोनम विश्वकर्मा, आशीष जी विश्वकर्मा। यतला महाराष्ट्र से जुड़ना चाह रहे शंकरलाल जयसवाल, गणेशलाल जयसवाल, शुभ प्रसाद जयसवाल, अपनव जयसवाल, दुर्गेश्वरी जयसवाल, राखी जयसवाल और तृप्ति जी जयसवाल। बलारी छत्तीसगढ़ से जुड़ रहे हैं नीतीश कुमार, दुर्गा प्रसाद, पराग टेलर, पूनाराम, कृष्णा जी। सहारनपुरा से जुड़ना चाह रहे समीद मशरूम, साइना हसन, आगजनाजिया, आफिया, इब्राहिम जी और सदाम जी। इसे भी जुड़ना चाह रहे हैं यूपी से सुरेश चौरासिया, श्रीमती सरोज चौरासिया, बाबू शिवा, शिवानी जी चौरासिया। इस गीत के अनुरोध करता है बिलासपुर छत्तीसगढ़ से हेमंत नामदेव, नंदिनी नामदेव, नेहा नामदेव, छन्नूला श्रीवास। इसे भी जुड़ना चाह रहे हैं बिहार से आर्यन राज, रोहित राज, पीयूष कुमार। जलालाबाद वेस्ट से जुड़ रही हैं सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा, विशाल प्रिया, दिशानी, निमित आहूजा जी। बिलासपुर छत्तीसगढ़ से जुड़ रही हैं छन्नूला श्रीवास, अनिता पुष्पा श्रीवास, अंजू योगिता श्रीवास, रंजन शाहू, हेमंत नामदेव, धर्मदास वाधवानी जी। भाटापारा छत्तीसगढ़ से जुड़ रही हैं सोहन जोशी, हरमिंदर सिंह चावला, लोकी जोशी, पायल जोशी, अंकिता जोशी, लक्ष्मी ध्रुव, विजेंद्र अग्रवाल, रानू अग्रवाल, बेबी वेदई जोशी, बेबी हंसिका जी जोशी। खड़वा मध्य प्रदेश से जुड़ना चाह रही हैं अब्दुल गफा डावर जी। बस्तर से जुड़ रही हैं पूनम जी नायडू। तो आइए श्रोता साथियों, सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को। गीत के बोल हैं जब हम जवा होंगे। इस गीत को आवाज दी है लता जी ने और शब्बीर कुमार जी ने। तो आइए साथियों, सुनते हैं श्रोता साथियों के फरमाइश के इस गीत को। तब तक आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में।

तो श्रोता साथियों, यह तो थी हमारी आज की सभा। आज की सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रम गीत संगीत आप सभी को कैसे लगी, इस बारे में आप अपने राय सुझाव हम तक पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर। हमारा पता ही वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागधारा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9414082643। तो श्रोता साथियों, फिर मुलाकात होगी अगली सभा में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आज की सभा से जाने की। आपकी अपनी साथी मनीषा पटेल को इसी अनुमति के साथ नमस्कार।

0: सबसे मजबूत बॉन्ड कौन सा होता है?
1: कौन सा?
0: ये वाला।
2: बालों की मजबूती होते हैं उनके प्रोटीन बॉन्ड्स। क्लिनिक प्लस की प्रोटीन बॉन्ड टेक्नोलॉजी लाखों बॉन्ड्स बनाए और बालों को दे नई सी मजबूती। क्लिनिक प्लस।
3: इश्क़

की फरमाइश में। जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते हैं कि कार्यक्रम के माध्यम से हम हमेशा और नियमित तौर पर ढेर सारी बातों के माध्यम से चर्चा

नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आप सभी के साथ आपके अपने दोस्त मनीषा पटेल और स्वागत करती हूँ आपका हमारी आज की सायकालीन सभा में। आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वावेट रेडियो 90.8 FM। साथ ही श्रोता साथियों, बताना चाहूँगी कि स्टूडियो की घड़ी में शाम के 5 बज चुके हैं। श्रोता साथियों, संध्याकालीन सभा की शुरुआत से पहले आइए जानते हैं पुनः प्रसारित कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा। सबसे पहले कार्यक्रम हम सुनेंगे भक्ति श्रद्धा व आस्था से जुड़ा कार्यक्रम आराधना। अगला कार्यक्रम शुरू होगा आपकी और हमारी आवाज यानी कि कार्यक्रम युवाओं की आवाज। इसे लेकर आएंगे प्रस्तुतकर्ता जागृति भट्ट और हमारे रेडियो साथी कशिश पारेषर। इस कार्यक्रम को आप सुन पाएंगे ठीक 5:30 पर। इसके बाद हम रुख करेंगे कार्यक्रम सच्चा बचपन की ओर। इस कार्यक्रम को लेकर आएंगे प्रस्तुतकर्ता अंजलि पारेषर और हमारे रेडियो साथी कशिश पारेषर। इसे आप सुन पाएंगे ठीक 6:00। फिर अगला कार्यक्रम शुरू होगा इसी कड़ी में किसान भाइयों का खेतीबाड़ी। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता होंगी अंजलि पारेषर और इस कार्यक्रम को आप सुन पाएंगे ठीक 6:30 पर। दोस्तों, कार्यक्रमों की रूपरेखा में आगे बढ़ते हुए हमारा अगला कार्यक्रम होगा सच्चा स्वराज। इस कार्यक्रम को आप सुन पाएंगे ठीक 7:00। इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता होगी जागृति भट्ट और हमारे रेडियो साथी अंजलि पारेषर। अगला कार्यक्रम होगा हमारे स्वास्थ्य से जुड़ा विशेष कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य, जिसे आप सुन पाएंगे मनीषा पटेल यानी कि मेरे साथ में, और मेरे साथ होगी हमारे रेडियो साथी कशिश पारेषर। इस कार्यक्रम को आप सुन पाएंगे ठीक 7:30 पर। इसके बाद आप सुन सकेंगे कार्यक्रम सपनों की उड़ान। इसे लेकर आएंगे हमारी रेडियो साथी। इस कार्यक्रम को आप सुन सकेंगे ठीक 8:00। दोस्तों, मनोरंजन की होगी पूरी भरमार, तभी आप सुन सकेंगे कार्यक्रम फिल्म संगीत ठीक 8:30 पर। श्रोता साथियों, इन्हीं नगमों के बाद हम रुख करेंगे गजलों की ओर, सुनेंगे कुछ प्यार भरी गजलों को रात्रि 9 से 10 बजे तक। तो श्रोता साथियों, यूं तो थी हमारी आज की संध्याकालीन सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा। तो आइए सभा की शुरुआत करते हैं कार्यक्रम आराधना से।

पूर्वाभासों के आधार पर हम भविष्य के सुख दुख की कल्पना करते हैं। भविष्य के दुख का कारण दूर करने के लिए हम आज योजना बनाते हैं, किंतु कल के संकट को आज निर्मूल करने से हमें लाभ मिलता है या हानि पहुंचती है, ये प्रश्न हम कभी नहीं करते। सत्य तो ये है कि संकट और उसका निवारण सात जन से, व्यक्ति के लिए भी और सृष्टि के लिए भी। नहीं, आप अपने भूतकाल का स्मरण कीजिए, इतिहास को देखिए, आप तुरंत ही ये जान पाएंगे कि जब जब संकट आता है तब तब उसका निवारण करने वाली शक्ति भी जन्म लेती। यही तो जगत का चलन है। वस्तु का संकट ही शक्ति के जन्म का कारण है। प्रत्येक व्यक्ति जब संकट से निकलता है तो एक पद आगे बढ़ा होता है, अधिक चमकता है, आत्मविश्वास से अधिक भरा होता है, ना केवल अपने लिए अपितु विश्व के लिए भी। क्या ये सत्य नहीं? वास्तव में संकट का जन्म है एक अवसर का जन्म, अपने आप को बदलने का, अपने विचारों को ऊंचाई पर करने का अवसर, अपनी आत्मा को बलवान और ज्ञान मंडित बनाने का। जो ये कर पाता है उसे कोई संकट नहीं होता, किंतु जो ये नहीं कर पाता वो तो स्वयं एक संकट है विश्व के लिए।

0: परंपरा में धर्म बसता है और परंपराएं ही धर्म को संभालने का कार्य करती हैं, ये सत्य है। पर क्या केवल परंपरा ही धर्म है? विचार कीजिए।
1: आप सुन रहे हैं आराधना, आपके अपने वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

0: थारी में पासो लावो जुनू हवा, सेहत बनेगा एकदम शानदार। बाजरा, ज्वार, रागी ने मक्का, ताकत भी भरपूर ने पोषण भी पक्कू। भारतीय खावानो सोड़ो, देशी अनाज तकी ना तो जोड़ो। मोटू अनाज अपनावंगा, शरीर में स्वस्थ राखंगा। बाबर रेडियो एवं बागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित। अगर चाहो तेज दिमाग में स्वस्थ जीवन, तो आयरन की भरपूर तत्वों करो भोजन। हो गए क्योंकि खून में आयरन तत्वों की कमी थकी एनीमिया रोग आपने थी सके। जल्दी थकान थावी, शारीरिक कमजोरी, याददाश्त में कमी, श्वास फूलवो, आ सब एनीमिया ना लक्षण है। होवे भाई बहनों, आ लक्षण आपने अपने में देखा तो आपने अपने पाए द्वारा राजकीय स्वास्थ्य केंद्र में पहुंचाएंगे, एनीमिया ने निःशुल्क जाँच करावी सुवे। आंगनवाड़ी केंद्र में राजकीय स्वास्थ्य केंद्र माते एनीमिया उपचार में गोली निःशुल्क मिले है। होते एनीमिया तक की बचा बल में आपने में खवाना में दाल, पत्तेदार सब्जी, गुड़, बाजरा, तिल, नींबू ने संतरा, गोभी, तरबूज, आंवला, टमाटर में सेवन करवो सुवे। होवे आ सब सावधानी राखंगा ने आ सब सब्जी ने दाल खंगा तो एनीमिया थकी बची सकंगा। वागा रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित। करे विचार करो कि जरा पानी छाने अपने रह दो या अपने में कितनी शांति रहेगी, जरा गले में अपने हवा ले दो, ये भी अपने थकी कई आश लागे है। हो गए अगर पेड़ न रहेगा तो अपने हरते जीवेगा, प्रकृति अपनी जरूरत नहीं बल्कि अपनी जिम्मेदारी है। एक पेड़ लगाऊंगा, पेड़ में बचा लूंगा, मैं अपनी धरती में जीवन दान मांगूंगा। हो गए प्रकृति में बचा वो भविष्य में हदारो। हो गए बदलाव की शुरुआत है। बाबू रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
1: पप्पा पप्पा मारे भी भणवा जावो है, सोपड़ा धरके दोस्ती करवी है।
0: बस यही तो शुरुआत है बदलाव की। जब हर बेटी बेटा पढ़ेगा तभी तो गांव गांव आगे बढ़ेगा। होवे न कोई गरीबी रोके न कोई हालात रोके, शिक्षा तो किस बदलेगा हर एक दाड़ो निरातर।
1: ठिंडो स्कूल जा आपड़े, आपड़ा भी अपना पूरा करो।
0: याद रखिए कलम की ताकत हर मुश्किल पर भारी है। हर बच्चे की पढ़ाई हम सबकी जिम्मेदारी है।
1: होवे जय वरे सब सोरा भणेगा तारे तो देश अगाड़ी बढ़ेगा।
0: शिक्षा नहीं तो सपना अधूरा, शिक्षा है हर बच्चे का पूरा हक।
1: वागो रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

0: कार्यक्रम युवाओं की आवाज में आप सभी साथियों का स्वागत है।
1: जी हाँ साथियों, मैं हूँ आप सभी के साथ आपके अपने साथी जागृति भट्ट।
0: मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी दोस्त कशिश पारशर।
1: स्वीकार करें हम दोनों का प्यार भरा नमस्कार।
0: जी हाँ श्रोता साथियों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM।
1: जी हाँ साथियों, लेकर हाजिर है कार्यक्रम युवाओं की आवाज को एक नए विषय के साथ में। आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हम बात करने वाले हैं ऐसी बात की जो सुनने में बहुत छोटी लगती है लेकिन हमारे जीवन में बड़े बदलाव की शुरुआत बन सकती है। कशिश,
0: बिल्कुल।
1: विषय है अपनी जरूरतों को समझना और छोटे छोटे बदलाव करते रहना।
0: जी हाँ
1: साथियों, हम अक्सर सोचते हैं कि जीवन बदलने के लिए कोई बहुत बड़ा फैसला लेना पड़ेगा, नई नौकरी ढूंढनी पड़ेगी, नए शहर में जाना पड़ेगा, नया लक्ष्य बनाना पड़ेगा और फिर अचानक अपनी पूरी दिनचर्या बदल देना। लेकिन सच ये है कि जिंदगी में स्थायी बदलाव हमेशा बड़े कदमों से नहीं आते श्रोताओं। कई बार हर दिन किया गया छोटा सा और सही बदलाव ही हमें धीरे धीरे उस जीवन के करीब ले जाता है जिसकी हमें सच में जरूरत है।
0: बिल्कुल जागृति जी, तो आज के इस कार्यक्रम में इसी विषय को लेकर ढेर सारी बातें हम हमारे युवा साथियों से करेंगे। लेकिन जैसा कि शुरुआत में गीत संगीत सुनाना हमारे कार्यक्रम का दस्तूर है, तो क्यों ना दोस्तों को पहले यहाँ एक प्यारा सा गीत हम सुनवा दे।
1: जी हाँ, तो आइए साथ ही सुन लेते हैं कार्यक्रम का यह गीत। आप बने रहे कार्यक्रम युवाओं की आवाज में।
0: जी हाँ

0: श्रोता साथियों, इस गीत के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है कार्यक्रम युवाओं की आवाज में। जैसा कि गीत से पहले बातचीत की शुरुआत हो चुकी है और विषय के बारे में भी हम आपको बता चुके हैं कि आज हम आपसे बात कर रहे हैं कि अपनी जरूरतों को समझना और छोटे छोटे बदलाव हमें कैसे करते रहना चाहिए। अगर जाकर दीजिए हम सबसे पहले यहाँ पर बात करें जरूरत और इच्छा में अंतर की, तो आज के समय में युवाओं के सामने विकल्पों की कमी नहीं है।
1: बिल्कुल,
0: सोशल मीडिया पर किसी की नई गाड़ी दिखाई देती है, किसी की नौकरी, किसी की यात्रा, किसी की सफलता और किसी की शानदार लाइफस्टाइल। इन्हें देखकर श्रोता साथियों हमें लगता है कि शायद हमें भी वही सब चाहिए। लेकिन यहाँ एक सवाल ये जरूरी है कि क्या जो चीज दूसरों के लिए जरूरी है वो मेरे लिए भी जरूरी है? और यही सवाल जागृति जी हमें अपनी जरूरतों को समझने की ओर ले जाता है।
1: बिल्कुल,
0: जरूरत वह है साथियों जो हमारे जीवन को बेहतर, सुरक्षित और संतुलित बनाने के लिए जरूरी है, जबकि इच्छा वह है जिसे हम चाहते तो है लेकिन उसके बिना भी हमारा जीवन चल सकता है।
1: बिल्कुल,
0: उदाहरण के रूप में जाने तो अच्छी शिक्षा एक जरूरत हो सकती है, लेकिन हर समय नया मोबाइल खरीदना जरूरत नहीं हो सकता। पर्याप्त आराम जरूरत है, लेकिन हर दिन घंटों सोशल मीडिया पर रहना जरूरत नहीं है। परिवार और दोस्तों से बातचीत जरूरी हो सकती है, लेकिन हर मैसेज का तुरंत जवाब देना जरूरी नहीं होता।
1: बिल्कुल,
0: इसलिए युवाओं के लिए सबसे जरूरी ये है कि वे खुद से पूछे कि क्या मुझे वास्तव में चाहिए, क्या मैं सिर्फ दूसरों को देखकर क्या चाह रहा हूँ।
1: जी हाँ कशिश, इसी के साथ हमारे श्रोता साथियों को हम ये कहना चाहेंगे कि श्रोताओं, खुद को समझने की आप शुरुआत कीजिए। अपनी जरूरतों को समझने के लिए सबसे पहले खुद को समझना बहुत जरूरी है।
0: बिल्कुल,
1: कभी कभी हम दूसरों की अपेक्षाओं को पूरा करते करते ये भूल जाते हैं कशिश कि हमें खुद क्या चाहिए। परिवार की उम्मीदें, समाज की सोच, दोस्तों का प्रभाव और सोशल मीडिया की तुलना, इन सबके बीच हमारी अपनी आवाज कहीं पीछे छूट जाती है।
0: बिल्कुल
1: साथियों, ऐसे में थोड़ा हमें रुकना जरूरी है। अपने आप से पूछिए कि मुझे अभी जीवन में सबसे ज्यादा किस चीज की जरूरत है। मुझे आराम की जरूरत है या लगातार व्यस्त रहने की? क्या मुझे नई चीज खरीदने की जरूरत है या मौजूद चीजों को बेहतर तरीके से इस्तेमाल करने की?
0: बिल्कुल,
1: क्या मुझे दूसरों की मंजूरी चाहिए या खुद पर भरोसा बढ़ाने की? क्या मेरी दिनचर्या मेरे लक्ष्य के अनुकूल है? साथियों, इन सवालों के जवाब हमें अपनी वास्तविक जरूरतों को पहचानने में मदद कर सकता है।
0: बिल्कुल, इसी के साथ साथियों छोटे बदलाव भी जरूरी है। अगर बात करें कि ऐसा क्यों, तो मान लीजिए कि किसी युवा को लगता है जागृति जी कि उसका पूरा दिन मोबाइल में निकल जाता है।
1: बिल्कुल,
0: अगर वह एक ही दिन में मोबाइल को पूरी तरह छोड़ने का फैसला करेगा तो संभव है कि वह कुछ दिनों बाद अपनी पुरानी आदत पर वापस लौट आएगा।
1: जी हाँ,
0: इसके बजाय श्रोता साथियों वह एक छोटा सा बदलाव कर सकता है, और वो ये कि सोने से आधा घंटा पहले मोबाइल अलग रखेगा।
1: जी हाँ,
0: फिर कुछ दिनों बाद सुबह उठते ही मोबाइल देखने की आदत को बदलना और फिर दिन में कुछ समय बिना स्क्रीन के बिताना। साथियों, देखते ही देखते छोटे छोटे बदलाव मिलकर एक नई दिनचर्या बना सकते हैं। और यही बात जागृति जी पढ़ाई, काम, स्वास्थ्य, रिश्तों, पैसे और व्यक्तिगत विकास पर भी लागू होती है।
1: बिल्कुल,
0: कहा जाता है कि बड़ा बदलाव हमेशा बड़ा फैसला नहीं मांगता, कभी कभी वह छोटे फैसलों की लगातार श्रृंखला भी होता है।
1: जी हाँ कशिश, अगर हम अपने जीवन में सुधार करना चाहते हैं तो एक साथ 10 चीजें बदलने की जरूरत नहीं है साथियों।
0: बिल्कुल,
1: बस एक चीज आप चुनिए कि अगर पढ़ाई में परेशानी है तो रोज 20 मिनट अतिरिक्त पढ़ना शुरू कीजिए। अगर खर्च ज्यादा हो रहा है तो रोज के छोटे छोटे खर्चों का हिसाब लिखना शुरू कर दीजिए।
0: बिल्कुल,
1: अगर परिवार से बातचीत कम हो गई है तो रोज कुछ मिनट परिवार के साथ बैठिए। अगर आप हमेशा तनाव में रहते हैं तो दिन में कुछ समय अपने लिए जरूर निकालिए।
0: बिल्कुल,
1: अगर आपको लगता है कि आप अपनी बात नहीं रख पाते हैं तो छोटी परिस्थितियों में अपनी राय व्यक्त करना शुरू कीजिए। छोटा बदलाव छोटा जरूर होता है, लेकिन लगातार किया जाए तो उसका परिणाम बड़ा हो सकता है।
0: बिल्कुल जागृति जी, तो जैसा कि श्रोता साथियों से हम कार्यक्रम के माध्यम से बातें कर रहे हैं तो ये बातें हमारी आगे भी ऐसे ही बनी रहेंगी। लेकिन अभी यहाँ पर सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।
1: बिल्कुल।

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम युवाओं की आवाज में। जैसा कि हमारी बातें चल रही थी, हमें अपनी जरूरतों को समझना है और छोटे बदलाव करते रहना है।
1: बिल्कुल।
0: तो जैसा कि गीत से पहले हमने बहुत सारी बातें की थी, यही जानते हैं साथियों कि खुद पर दबाव नहीं, खुद के साथ हम किस तरह से धैर्य रख सकते हैं। कशिश, हम देखते हैं कि आज की तेज जिंदगी में हम खुद से बहुत ज्यादा उम्मीद करने लगे हैं। हम चाहते हैं कि कुछ ही दिनों में सब बदल जाएगा, लेकिन जीवन कोई स्विच नहीं है जिसे दबाते ही सब कुछ बदल दिया जाए। आदतें समय लेती है, सोच बदलने में समय लगता है, आत्मविश्वास बनने में समय लगता है।
1: बिल्कुल।
0: इसीलिए अगर किसी दिन आपका बनाया हुआ नियम टूट जाए श्रोताओं, तो खुद को असफल मत मानिए। एक दिन आप कम पढ़ पाए, अगले दिन फिर से आप शुरू कर दीजिए। कसरत नहीं हो पाई, अगले दिन थोड़ा समय ज्यादा निकालिए। बजट बिगड़ गया, अगले दिन फिर से हिसाब शुरू कर दीजिए। गलती बदलाव की दुश्मन नहीं है, गलती से सीखना बदलाव का हिस्सा है।
1: बिल्कुल जागृति जी। साथ ही सोशल मीडिया और जरूरतों की समझ होना भी जरूरी है।
0: बिल्कुल।
1: जैसे कि आज सोशल मीडिया हमारी जरूरतों और इच्छाओं को भी प्रभावित करता है। हम श्रोता साथियों लगातार ऐसी चीजें देखते हैं जो हमें कुछ खरीदने, कहीं जाने, कहीं कुछ बनने और किसी के जैसा दिखने के लिए प्रेरित करती है। इसलिए युवाओं के लिए डिजिटल समझ भी बहुत जरूरी है।
0: बिल्कुल।
1: हर चीज जो ट्रेंड कर रही है वो जरूरी नहीं है कि वो हमारे लिए जरूरी हो। हर व्यक्ति की जिंदगी अलग है, किसी और की सफलता देखकर प्रेरणा लेना अच्छी बात है, लेकिन अपनी जिंदगी की तुलना लगातार दूसरों से करना सही नहीं है साथियों।
0: जी
1: हमें तय करना होगा कि हम अपनी जरूरतों के अनुसार जीवन जी रहे हैं या दूसरों की दिखाई हुई जिंदगी के अनुसार।
0: और हम कहना चाहेंगे कि साथियों, युवा अवस्था में पैसे को लेकर सही आदतें बनाना बहुत जरूरी है। अपनी आय और खर्च को समझना जरूरी है, अपनी इच्छा और जरूरत में अंतर करना जरूरी है, बिना सोचे समझे खरीदारी से बचना जरूरी है। ये छोटे बदलाव भविष्य में बड़ी मदद कर सकते हैं।
1: बिल्कुल।
0: कशिश, हम देखते हैं कि हर महीने थोड़ा पैसा बचाना, अनावश्यक खर्च को पहचानना और खरीदने से पहले खुद से पूछना है, क्या मुझे सच में इसकी जरूरत है। ये सवाल हमारी आर्थिक आदतों को बेहतर बना सकता है श्रोताओं।
1: बिल्कुल।
0: साथ ही आपसे कहना चाहेंगे कि हम अक्सर ये सोचते हैं कि रिश्ते मजबूत करने के लिए बड़े बड़े काम करने पड़ते हैं, लेकिन कई बार एक छोटी सी बातचीत काफी होती है।
1: बिल्कुल।
0: घर में किसी से पूछ लेना कि आज आपका दिन कैसा रहा, किसी दोस्त की बात बिना बीच में टोके सुन लेना, माता पिता के साथ कुछ समय बैठ जाना, किसी बुजुर्ग की बात को ध्यान से सुन लेना, ये जो छोटी छोटी बातें हैं वो रिश्तों में बहुत बड़ा बदलाव ला सकती है।
1: बिल्कुल जागृति जी। और ये जो बदलाव है वो सिर्फ व्यक्तिगत जीवन तक सीमित नहीं है।
0: बिल्कुल।
1: अगर एक युवा पानी की बर्बादी कम करता है और दूसरा प्लास्टिक का इस्तेमाल कम करता है, कोई तीसरा सार्वजनिक स्थान को साफ रखता है और कोई जरूरतमंद व्यक्ति की मदद करता है, तो ये छोटे कदम मिलकर समाज में बड़ा बदलाव ला सकते हैं। साथियों, समाज किसी एक बड़े बदलाव से नहीं बल्कि लाखों लोगों के छोटे छोटे जिम्मेदार व्यवहार से बदलता है।
0: बिल्कुल।
1: युवाओं के पास ऊर्जा है, नए विचार है और बदलाव की क्षमता है, लेकिन इस क्षमता को सही दिशा देना भी जरूरी है। हर युवा को अपनी जिंदगी में समय समय पर रुक कर देखना चाहिए कि वे कहाँ है, उन्हें कहाँ जाना है और उनकी वास्तविक जरूरत क्या है।
0: बिल्कुल।
1: और आज वे कौन सा छोटा कदम उठा सकते हैं। साथियों, ये जरूरी नहीं है कि आज ही पूरी जिंदगी आप बदल लें। जरूरी ये है कि आज का कदम कल से आपके लिए थोड़ा बेहतर होना चाहिए।
0: बिल्कुल। तो साथियों, आज की इस बातचीत से एक बात अपने साथ जरूर लेकर जाइए कि अपनी जिंदगी को बदलने के लिए हमेशा बड़े फैसलों का इंतजार मत करिए। अपने कमरे की चीज व्यवस्थित करना भी बदलाव है, रोज थोड़ा समय पढ़ना भी बदलाव है, अनावश्यक खर्च रोकना भी बदलाव है, परिवार से बात करना भी बदलाव है, अपने मन की बात को समझना भी बदलाव है, और सबसे महत्वपूर्ण अपनी जरूरतों को पहचानना भी बदलाव की पहली सीढ़ी है।
1: जी हाँ।
0: क्योंकि कशिश, जिंदगी में सबसे अच्छा बदलाव वही होता है जिसे हम समझकर अपनी गति से और लगातार आगे बढ़ते रहते हैं।
1: बिल्कुल।
0: और कहा भी गया है कि जरूरत पहचाने, छोटे कदम बढ़ाए, हर दिन खुद को थोड़ा बेहतर बनाए।
1: जी हाँ।
0: साथ ही एक बात हमेशा याद रखिए साथियों कि बदलाव के लिए जिंदगी के किसी खास दिन का इंतजार मत कीजिए। आज का एक छोटा सा कदम ही आपके बेहतर कल की शुरुआत बन सकता है।
1: बिल्कुल जागृति जी। तो इस तरीके से हम कार्यक्रम के माध्यम से जैसा कि हमारे श्रोता साथियों को बता पाए हैं कि जरूरत और इच्छा के बीच अंतर को समझना हमारे युवाओं के लिए कितना जरूरी है, और उनकी छोटी छोटी जरूरतें जब वे समझ जाते हैं तो छोटे छोटे बदलाव उनके जीवन में कितना महत्व रखते हैं, ये भी हम जान पाए हैं।
0: बिल्कुल।
1: अब जैसा कि बातें कार्यक्रम के माध्यम से ढेर सारी हो चुकी है और समय भी हो चला है कार्यक्रम से विदा लेने का, तो विदा हम जरूर लेंगे, लेकिन जाने से पहले क्यों ना एक और प्यारा सा गीत हमारे युवाओं को हम यहाँ पर सुनवाएं।
0: बिल्कुल।

0: साथियों, आज के इस कार्यक्रम से हम विदा लेना चाहेंगे, पर जाने से पहले आपको हमारा पता भी बताना चाहेंगे ताकि आपको हमारा आज का कार्यक्रम कैसा लगा उसके लिए आप अपने राय सुझाव हम तक जरूर पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर। तो श्रोता साथियों, लिख लीजिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम युवाओं की आवाज, वागर रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागधरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन भी कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9414082643। इसी के साथ साथियों, आप अपनी प्रतिक्रिया हमें हमारी ईमेल आईडी पर भी दे सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org।
1: तो दोस्तों, फिर से मुलाकात होगी हमारी आपसे इसी कार्यक्रम में, इसी समय, एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए आज के इस कार्यक्रम से जाने की अनुमति आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर को
0: और आपके अपने साथी जागृति भट्ट को।

0: सब कुछ दे देती है।
1: क्या उसे अपने ही घर में अपने नाम की जमीन नहीं मिलनी चाहिए?
0: एक बेटी जो सपने लेकर बड़ी होती है, क्या उसे वाकई उतना हक मिलता है जितना उसके भाई को?
1: भूमि अधिकार सिर्फ दस्तावेज नहीं, यह सुरक्षा है, सम्मान है और महिला की उस पहचान का प्रमाण जिसे अक्सर हम नजरअंदाज कर देते हैं।
0: आइए आज हम बदलाव की शुरुआत करें, महिलाओं को दे उनका हक जमीन पर भी जिंदगी में भी। महिलाओं के भूमि अधिकार, क्योंकि बराबरी का वादा पूरा भी होना चाहिए। वावर रेडियो एवं वाग्धारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित। दोस्तों अगर चाहो तेज दिमाग और स्वस्थ जीवन तो आयरन युक्त तत्वों से भरपूर करें भोजन। खून में आयरन तत्वों की कमी होने पर एनीमिया रोग हो सकता है, जल्दी थकान होना, शारीरिक कमजोरी, याददाश्त में कमी, सांस फूलना, ये सभी एनीमिया के ही लक्षण हैं। लक्षण महसूस होने पर साथियों अपने नजदीकी राजकीय स्वास्थ्य केंद्र में एनीमिया की निःशुल्क जाँच जरूर करवाएं। हीमोग्लोबिन का स्तर 7 से कम होना अति गंभीर स्थिति को दर्शाता है। ऐसी स्थिति में चिकित्सक को जरूर दिखाएं और उचित उपचार लें। वागड़ रेडियो एवं वाग्धारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित। भूमि आवंटन हो, दाखिल खारिज हो या राजस्व विभाग में प्रक्रिया, हर बोना ने मिले सही जानकारी, सही मार्गदर्शन में बराबरी नो अधिकार। याद रखो जई बन सशक्त थाए यस विकास नो सही रास्तो निकले है। वावर रेडियो एवं वाग्धारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

0: कार्यक्रम सच्चा बचपन में आप सभी साथियों का स्वागत है।
1: जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी अंजलि पाराशर।
0: मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर।
1: स्वीकार करिएगा हम दोनों का प्यार भरा नमस्कार।
0: जी हाँ दोस्तों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागर रेडियो 90.8 FM।
1: हाजिर हो गए हैं साथियों कार्यक्रम सच्चा बचपन को लेकर अपने नियत समय पर एक नए विषय के साथ में। कशिश, आज कार्यक्रम में हमारी श्रोता साथियों से बातचीत का विषय है त्योहारों में बच्चों का पोषण, व्रत और त्योहार के बीच संतुलित भोजन कैसे थे।
0: बिल्कुल
1: जी हाँ साथियों, त्योहारों का मौसम आते ही घर में रौनक बढ़ जाती है। कहीं मिठाइयाँ बनती हैं, कहीं पकवान तैयार होते हैं, तो कहीं व्रत और पूजा की विशेष तैयारी होती है।
0: बिल्कुल,
1: इन सब के बीच बच्चे भी स्वादिष्ट चीजें खाने के लिए उत्साहित रहते हैं। लेकिन क्या हम त्योहारों की खुशियों में बच्चों के पोषण का भी ध्यान रख पाते हैं? क्या केवल मिठाई, नमकीन और तली हुई चीजें खाने से बच्चों को पर्याप्त पोषण मिल सकता है? कशिश, आज के कार्यक्रम में हम इसी विषय पर बात करेंगे कि व्रत त्योहार के बीच बच्चों को स्वादिष्ट भोजन के साथ पौष्टिक आहार कैसे दें ताकि उनकी सेहत भी अच्छी रहे और त्योहार की खुशियाँ भी बनी रहे।
0: बिल्कुल अंजलि जी, तो इस विषय को लेकर आज हम हमारे श्रोता साथियों से कार्यक्रम के माध्यम से बातें ढेर सारी करेंगे। लेकिन जैसा कि शुरुआत में गीत संगीत सुनाना हमारे कार्यक्रम का दस्तूर है,
1: बिल्कुल,
0: तो क्यों ना इस दस्तूर को हम निभाए और हमारे श्रोता साथियों को यहाँ पर एक प्यारा सा गीत हम सुनवा दें।
1: बिल्कुल, तो आइए दोस्तों सुनते हैं इस गीत को। आप बने रहिएगा वागा रेडियो 90.8 FM पर।

0: श्रोता साथियों, इस गीत के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है कार्यक्रम सच्चा बचपन में। जैसा कि गीत से पहले विषय बता चुके हैं कि आज हम आपसे बात कर रहे हैं त्योहारों में बच्चों के पोषण को लेकर।
1: बिल्कुल
0: अंजलि जी, अगर बात करें कि त्योहार में बच्चों की खान पान पर ध्यान देना क्यों जरूरी होता है, तो जैसा कि हम देखते हैं कि त्योहार के दौरान बच्चों की दिनचर्या बिल्कुल बदल जाती है। कभी देर से उठना, कभी समय पर भोजन नहीं करना, तो कभी बार बार मिठाई और नमकीन खाना उनकी आदत बन जाती है।
1: बिल्कुल
0: इससे श्रोता साथियों, उनका नियमित भोजन प्रभावित होता है। बच्चों के बढ़ते शरीर को ऊर्जा, प्रोटीन और विटामिन और खनिज की जरूरत होती है। इसलिए त्योहारों के दौरान भी दाल, रोटी, चावल, दूध या दही, मौसमी फल और सब्जियों को भोजन में शामिल करना हमारे श्रोता साथियों के लिए बहुत जरूरी है।
1: बिल्कुल,
0: क्योंकि हम कह सकते हैं कि इससे बच्चों का विकास जो है वो धीरे धीरे बढ़ता रहता है।
1: यहीं कशिश अब बात आती है, मिठाइयों के साथ पौष्टिक भोजन भी जरूरी है। श्रोता साथियों, त्योहारों पर बच्चों को मिठाई खिलाना स्वाभाविक है, लेकिन मिठाई को ही भोजन का विकल्प नहीं बनाना चाहिए। अधिक मीठा खाने से बच्चों का पेट भर सकता है और वह जरूरी पौष्टिक भोजन खाने से मना कर सकता है।
0: जी हाँ,
1: माता पिता बच्चों को सीमित मात्रा में मिठाई दे सकते हैं, साथ ही उन्हें घर का बना हलवा, खीर या अन्य पकवान भी उचित मात्रा में थे और नियमित भोजन का समय बना कर रखें। क्योंकि कशिश, हम देखते हैं कि बहुत सी बार बहुत से बच्चों को मीठा पसंद होता है और हम देखते हैं कि त्योहारों में और अभी जैसा कि बहुत सारी चीजें आती ही रहती हैं, व्रत त्योहार और ये सब, तो बच्चे जो है घर पर जो भी मीठा बनता है उसे खाने की जिद करने लगते हैं। लेकिन हमें मीठा बच्चों को सीमित मात्रा में ही देना है। इन सारी चीजों का माता पिता को विशेष ध्यान रखने की जरूरत होती है।
0: जी हाँ अंजलि जी, साथ ही अगर बात करें कि व्रत के दौरान बच्चों को क्या खिलाया जाए, तो साथियों कई घरों में व्रतों के समय विशेष भोजन बनाया जाता है। लेकिन हमें यहाँ पर ध्यान रखना है कि छोटे बच्चों को बड़ों की तरह व्रत करने के लिए बाध्य हमें नहीं करना है।
1: बिल्कुल,
0: बढ़ते बच्चों को नियमित अंतराल पर पौष्टिक भोजन की जरूरत होती है अंजलि जी। यदि घर में व्रत का भोजन बन रहा है, तो बच्चों को उनकी उम्र और जरूरत के अनुसार हम फल, दूध, दही, आलू जैसे जो खाद्य पदार्थ होते हैं वो दे सकते हैं।
1: बिल्कुल,
0: साथ ही बच्चे को पर्याप्त पानी पिलाना भी जरूरी है और उसके सामान्य भोजन की जरूरतों का ध्यान रखना भी हमें चाहिए श्रोता साथियों।
1: बिल्कुल, यह बात आती है श्रोता साथियों कि त्योहारों की तैयारी में कभी कभी माता पिता इतने व्यस्त हो जाते हैं कि बच्चों के खाने का समय निकल जाता है।
0: बिल्कुल,
1: कुछ बच्चे भी खेलते कूदते भोजन करना भूल जाते हैं। इसलिए घर में बच्चों के नाश्ते, दोपहर के भोजन और रात के खाने का समय यथासंभव नियमित रखें।
0: जी हाँ,
1: बाहर जाना हो तो साथ में फल या घर का बना हल्का नाश्ता रख सकते हैं। इससे बच्चे लंबे समय तक भूखे भी नहीं रहेंगे और बच्चों को खाना भी मिल पाएगा। इसी के साथ श्रोता साथियों, बच्चों को त्योहार पर स्वादिष्ट पकवान पसंद आते हैं। ऐसे में हम थोड़ी समझदारी से उनके भोजन को पौष्टिक बना सकते हैं।
0: बिल्कुल,
1: जैसे कि हम नाश्ते में पोहा, उपमा, दूध के साथ फल दे सकते हैं। भोजन में दाल, सब्जी और रोटी रख सकते हैं। पकवान बनाते समय तेल और चीनी की मात्रा सीमित रखनी है, इसका हमें विशेष ध्यान रखना है।
0: बिल्कुल,
1: कि बच्चों को उनकी उम्र के अनुसार भोजन देना है और जबरदस्ती हमें बच्चों को नहीं खिलाना है। बहुत सी बार ऐसा होता है कि माता पिता बच्चों के साथ जबरदस्ती करने लगते हैं कि अगर बच्चा इतना भी नहीं खाएगा तो क्या होगा, बच्चा कहीं भूखा नहीं रह जाए। ऐसी चीजों पर हमें ध्यान देना है कि जब बच्चा खाने से मुंह मोड़ रहा है या अगर वो खाना मुंह से बाहर निकाल रहा है, मतलब बच्चे का पेट भर चुका है, अब उसे और भोजन की जरूरत नहीं है।
0: बिल्कुल अंजलि जी, आपने सही कहा। साथ ही हम देखते हैं कि कई बार माता पिता बच्चों के भोजन को लेकर इतने चिंतित होते हैं, जिसकी वजह से वे बच्चों को जबरदस्ती खाना खिलाते हैं, जैसा कि आपने बताया, जिससे बच्चा कई बार भोजन के प्रति कह सकते हैं कि क्रोधित हो जाता है या फिर चिड़चिड़ा हो जाता है। और जो भोजन उसको हम खिला रहे होते हैं या उसकी मनपसंद का भी क्यों ना हो, वो उसे नहीं खाता है, क्योंकि उसके अंदर श्रोता साथियों ये बात घर कर जाती है कि अगर वो खाना खाएगा तो आप उसे जबरदस्ती खाना खिलाएंगे। इसलिए हम आपसे कार्यक्रम के माध्यम से ये कहना चाहेंगे कि आप बच्चों को खाना जरूर खिलाएं, लेकिन उनकी इच्छा का भी ध्यान रखें। उन्हें आप जबरदस्ती खाना न ठूसे मुंह में, क्योंकि कई माता पिता ऐसा करते हैं अंजलि जी। तो ऐसे में हमारे श्रोता साथियों को ये नहीं करना चाहिए, बल्कि बच्चों को हम थोड़े थोड़े समय में कुछ कुछ खाने को दे सकते हैं।
1: बिल्कुल कशिश, आपने सही कहा। तो जैसा कि कार्यक्रम में बहुत अच्छी बातें चल रही है, आगे भी निरंतर यही बनी रहेंगी, लेकिन अभी कर लेते हैं मनोरंजन एक रुपया से गीत के साथ में।

0: साथियों, इस गीत के बारे में फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम सच्चा बचपन में। जैसा कि गीत से पहले हमने जाना कि किस तरीके से हमें बच्चों को भोजन जबरदस्ती नहीं खिलाना है, उनकी इच्छा पसंद और नापसंद का भी हमें ध्यान रखने की जरूरत है।
1: बिल्कुल,
0: यही कशिश हम देखते हैं कि त्योहार के दौरान भागदौड़ और खेल कूद के कारण बच्चे पानी पीना भूल सकते हैं।
1: जी जी।
0: शरीर में पानी की कमी से थकान और परेशानी हो सकती है, इसलिए बच्चों को नियमित रूप से साफ पानी पीने के लिए प्रेरित करें। साथ ही भोजन बनाने और खिलाने से पहले हाथ धोएं, खुले में रखी मिठाइयों और दूषित भोजन से बचें। छोटे बच्चों को साबुत मेवे या कठोर खाद्य पदार्थ देते समय विशेष सावधानी रखें, क्योंकि उनसे गले में फंसने का खतरा हो सकता है।
1: जी हाँ दिलीप जी, ये बात आपने सही कही। हाँ, यही हम कहना चाहेंगे कि बच्चों को केवल ये बताना पर्याप्त नहीं है कि क्या खाना चाहिए, बल्कि उन्हें भोजन की अच्छी आदतें भी सिखानी चाहिए। जैसे कि परिवार के सदस्य साथ बैठकर भोजन करें और बच्चों को अलग अलग पौष्टिक चीजें चखने के लिए हम प्रोत्साहित करें। दोस्तों, बच्चों को हम ये समझाएं कि त्योहार का आनंद केवल मिठाइयों में नहीं बल्कि परिवार के साथ समय बिताने, खेलने और खुशियां बांटने में भी है।
0: बिल्कुल,
1: जब घर के बड़े अंजलि जी संतुलित भोजन करेंगे तो बच्चे भी हम देखेंगे कि उनकी इन अच्छी आदतों को जरूर सीखेंगे।
0: बिल्कुल, श्रोता साथियों कहना चाहेंगे कि त्योहार में बच्चे अक्सर अपनी पसंद की चीजें ही खाना चाहते हैं। ऐसे में माता पिता उन्हें प्यार से अलग अलग पौष्टिक खाद्य पदार्थ खाने के लिए प्रेरित करें। थाली में अनाज, दाल, सब्जियां, फल और दूध या दही जैसे खाद्य पदार्थ शामिल करें, ताकि बच्चे को जरूरी पोषक तत्व मिल सके। त्योहारों पर चिप्स, पैकेट वाले नमकीन और अधिक मीठे पेय पदार्थ बच्चों को आकर्षित करते हैं। इनके स्थान पर घर का बना पोहा, भुना मखाना, तल, दही जैसे विकल्प हम बच्चों को दे सकते हैं। इससे बच्चों को स्वाद के साथ बेहतर पोषण भी मिल पाएगा।
1: जी हाँ अंजलि जी, साथ ही दोस्तों बच्चों की भूख के संकेतों को भी समझना जरूरी है। यानी कि हर बच्चे की भूख और भोजन की जरूरत अलग अलग हो सकती है अंजलि जी।
0: बिल्कुल,
1: इसलिए बच्चे को बार बार जबरदस्ती खिलाने या उनकी भूख को अनदेखा करने के बजाय हमें उनकी जरूरतों पर ध्यान देना चाहिए। उन्हें आराम से बैठकर खाने दें। श्रोता साथियों, भोजन के समय मोबाइल या टीवी से दूर रखने की भी आप कोशिश करें। साथ ही बच्चों की दिनचर्या को भी बिगड़ने न दें, क्योंकि हम अक्सर देखते हैं कि त्योहार आते हैं अंजलि जी तो बच्चों की दिनचर्या बिगड़ जाती है। वे देर रात तक जागते हैं, फिर सुबह देर से उठते हैं और समय पर भोजन नहीं करते हैं।
0: बिल्कुल,
1: जिसके कारण इससे बच्चों की दिनचर्या प्रभावित हो जाती है। श्रोता साथियों, त्योहारों की व्यस्तता के बीच भी बच्चों की नींद, खेलने के समय और भोजन की नियमितता बनाए रखने का पूरा प्रयास करें।
0: बिल्कुल कशिश, आपने सही कहा। तो श्रोता साथियों कहना चाहेंगे कि बच्चों को उतना ही भोजन थाली में लेने की आदत सिखाएं जितना वे खा सकें। उन्हें समझाएं कि भोजन की कद्र करना और जरूरतमंदों के साथ खुशियां बांटना भी त्योहारों का महत्वपूर्ण हिस्सा है।
1: बिल्कुल,
0: त्योहार में बच्चों को हर स्वाद का आनंद लेने दें, लेकिन उनकी उम्र, भूख और पोषण की जरूरतों का ध्यान रखते हुए संतुलित भोजन की आदत बनाकर रखें। क्योंकि श्रोता साथियों, त्योहारों की रौनक के बीच बच्चों के पोषण को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। मिठाइयाँ और पकवान त्योहारों की खुशियाँ बढ़ाते हैं, लेकिन बच्चों के स्वस्थ विकास के लिए नियमित और संतुलित भोजन भी उतना ही जरूरी है।
1: बिल्कुल,
0: इस त्योहार पर हम संकल्प लें कि बच्चों को स्वाद के साथ सेहत भी देंगे, उन्हें समय पर भोजन कराएंगे, पौष्टिक आहार देंगे और बिना जरूरत उन्हें उपवास नहीं कराएंगे।
1: जी जी,
0: याद रखिए कि स्वस्थ बच्चा ही खुशहाल बचपन की पहचान है।
1: बिल्कुल अंजलि जी, इस तरीके से जैसा कि आज के इस कार्यक्रम में बातें हमारे श्रोता साथियों से हमारी ढेर सारी हो चुकी हैं और समय भी हो चला है कार्यक्रम से विदा लेने का।
0: बिल्कुल,
1: तो विदा हम जरूर लेंगे, लेकिन जाने से पहले सुनते हैं यहाँ पर एक और प्यारा सा गीत।
0: बिल्कुल।

0: साथियों, इस गीत के बाद कार्यक्रम के अंत में आपको यही कहना चाहेंगे कि त्योहार हमारे जीवन में खुशियों, उमंग और अपनों के साथ समय बिताने का अवसर लेकर आता है। घर में पूजा पाठ, पकवानों की खुशबू, मिठाइयों की मिठास और बच्चों की हंसी से त्योहार और भी खास बन जाते हैं। लेकिन इन खुशियों के बीच कशिश हमें यह भी समझना होगा कि बच्चों का स्वस्थ बचपन हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है।
1: बिल्कुल,
0: बच्चे आज जो खान पान की आदतें सीखते हैं, उनका असर उनके आने वाले जीवन पर भी पड़ता है। इसलिए त्योहारों को केवल स्वाद और पकवानों तक सीमित न रखें, बल्कि उन्हें बच्चों में अच्छी आदतें विकसित करने का अवसर भी बनाएं। अक्सर हम बच्चों की खुशी के लिए उनकी हर पसंद की चीज उन्हें दे देते हैं, लेकिन सच्चा प्यार वही है जिसमें उनकी पसंद के साथ उनकी सेहत का भी ध्यान रखा जाए। बच्चों को यह समझाना जरूरी है कि भोजन का उद्देश्य केवल पेट भरना नहीं, बल्कि शरीर को मजबूत बनाना, दिमाग को सक्रिय रखना और दिन भर ऊर्जा बनाए रखना भी है। जब हम उन्हें भोजन का महत्व प्यार से समझाते हैं, तो वे धीरे धीरे स्वयं भी अच्छे और पौष्टिक खाद्य पदार्थों को चुनना सीखते हैं। इसके लिए माता पिता का व्यवहार सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि बच्चे बड़ों की बातों से ज्यादा उनके व्यवहारों को देखकर सीखते हैं।
1: जी हाँ अंजलि जी, इन्हीं बातों के साथ अब हम कार्यक्रम से विदा लेते हैं। उम्मीद करते हैं साथियों कि आज के इस कार्यक्रम में जो भी हमारी आपसे बातें रही वो आपको जरूर पसंद आई होंगी। तो श्रोता साथियों, आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा, इस बारे में आप अपने राय सुझाव हम तक पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
0: जी हाँ श्रोता साथियों, लिख लीजिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम सच्चा बचपन, बाबा रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कोपरा, वाकथरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 3200001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर।
1: बिल्कुल,
0: हमारा फोन नंबर है 9414002643।
1: इसी के साथ दोस्तों, आप हमें हमारी ईमेल आईडी पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org।
0: तो शुभ साथियों, फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में इसी समय एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपकी अपनी साथी अंजलि पाराशर
1: और आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर को।
0: नमस्कार।

कार्यक्रम खेतीवाड़ी हमरा द्वारा हमरे भाई बहनों ने आप बोल अंजलि नु राम राम। किसान भाई बहन आप हमरे रहो अपने सामुदायिक रेडियो वगर रेडियो 90.8 FM मते ने आप सबनो घणे मान स्वागत करो हो हमारे आज के कार्यक्रम खेतीवाड़ी में। जेम के भाई बहनो अमे हमारे टीम माते हाजिर थी सह कार्यक्रम खेतीवाड़ी ने लेनी एक ना विषय ने हाते। भाई बहनो आज हमारे कार्यक्रम में अब तक की बातचीत नो विषय है पारंपरिक बीज नागरिक खेती की विरासत आत्मनिर्भरता और बेहतर उत्पादन में आधार है। अड़ा विषय माता खाना कहने हमारे अब तक की बातें रहेंगे पर कार्यक्रम शुरू करें इन्हें पहले अपने हमारा विदा गीत तुम्हारे कर अपनी बातें बहन बोलो आप हमारे तरह जो अपने रेडियो अपनी बातें वाक रेडियो 90.8 FM माते हैं।

0: प्रबंधन करना वागर जो क्षेत्र है उसकी खेती की विरासत है, आत्मनिर्भरता है और बेहतर उत्पादन का आधार है। तो सबसे पहले आप हम यही बताइए कि आदिवासी क्षेत्र में पारंपरिक बीजों का प्रबंधन कैसे किया जाता है और इसका क्या महत्व है।
1: तो किसान भाइयों, अगर हम हमारे पारंपरिक बीज की बात करें तो वागड़ अंचल का हमारा जो आदिवासी क्षेत्र है, यहाँ खेती की जो परंपरा है वो आदिकाल से चली आ रही है।
0: बिल्कुल।
1: और प्रकृति आधारित जीवन शैली का जो केंद्र है उसको हम खेती और इससे जुड़ी हुई चीजें मानते हैं। तो यहाँ के किसानों ने पीढ़ी दर पीढ़ी अपने अनुभव, परंपरागत ज्ञान और स्थानीय परिस्थितियों के आधार पर खेती की ऐसी प्रणालियां विकसित की जो कम संसाधनों में भी बेहतर उत्पादन देने में सक्षम है।
0: बिल्कुल।
1: इन प्रणालियों में सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है, जिसे हम खेती की आत्मा कह सकते हैं, वो है हमारा पारंपरिक बीज। क्योंकि बीज खेती के लिए एक आदान या वस्तु नहीं है, बल्कि ये हमारे किसान साथियों के लिए उनकी स्वतंत्रता, उनकी खाद्य सुरक्षा, उनकी संस्कृति और खेती के ज्ञान का प्रतीक है।
0: बिल्कुल।
1: तो किसान भाइयों, हम कह सकते हैं कि जिस किसान के पास अपना बीज होता है वो खेती के लिए बाजार पर बहुत कम निर्भर रहता है।
0: जी जी सर।
1: इसी के उल्टे यदि हम बात करें तो किसान हर साल बीज खरीदने के लिए बाजार की तरफ देखते हैं। कई बार बीज के मिलने में जो देरी होती है उससे उनकी फसल प्रभावित होती है।
0: बिल्कुल।
1: और बीज के साथ कई सारे बाहरी संसाधनों पर उनकी निर्भरता बढ़ती चली जाती है।
0: जी जी।
1: तो आज अगर खेती की लागत बढ़ रही है, इसमें उर्वरक, कीटनाशक, मजदूरी और सिंचाई, इनके खर्च जो किसानों के लिए एक बड़ी चुनौती बनते जा रहे हैं, यहाँ पे ऐसे समय में अपने खेत का शुद्ध और गुणवत्तापूर्ण बीज यदि वो तैयार करें तो इससे कई तरह से हमारी खेती में लागत को कम करने में सहायता मिलेगी।
0: बिल्कुल सर।
1: और आत्मनिर्भर खेती की दिशा में ये हमारा पहला और महत्वपूर्ण कदम होगा।
0: बिल्कुल सर, आपने सही कहा। जैसा कि आपने बताया कि किस तरीके से अगर किसान के पास खुद का अपना बीज होता है तो उसकी बाजार की निर्भरता कम हो जाती है, और अगर उसके पास अपना बीज नहीं होता है तो किस तरीके से खर्च बढ़ता है और उसके सामने चुनौती आ जाती है। यही अब मैं आपसे जानना चाहूंगी कि वागड़ क्षेत्र के किसान किस तरीके से बीजों का प्रबंधन करते हैं।
1: तो देखिए किसान भाइयों, जैसे कि कहा भी जाता है, जैसा बीज वैसी फसल। तो खेती की सफलता का पहला आधार अच्छा बीज।
0: बिल्कुल।
1: यदि बीज स्वस्थ है, शुद्ध है और इसी के साथ वो मजबूत है तो फसल भी अच्छी होगी। इसलिए किसान पूरे वर्ष अच्छी उपज की उम्मीद लेकर खेती करते हैं। और हमारे वागड़ क्षेत्र की जो मुख्य खेती है वो वर्षा आधारित खेती है, यानी कि वो बारिश के पानी पर निर्भर करती है।
0: बिल्कुल।
1: तो ऐसी स्थिति में यदि बीज कमजोर या खराब हुआ तो हमारा खर्च, हमारी मेहनत दोनों जो है प्रभावित होते हैं। तो किसान साथियों, यदि बीज प्रबंधन की बात करें, यानी कि बीज की व्यवस्था की बात करें,
0: जी जी,
1: तो वागड़ की जो पारंपरिक बीज की संस्कृति है इसमें ज्यादातर जो फसल के लिए लगने वाला बीज होता है वो किसान पहले से अपने घरों में रखते हैं। तो वागड़ के गांव में बीज संरक्षण कोई व्यक्तिगत कार्य नहीं है।
0: बिल्कुल।
1: बल्कि ये एक सामुदायिक संस्कृति का हिस्सा है, जहाँ पे हम देखते हैं कि कई बार या तो हमारे पास बीज कम है या किसी तरह का बीज यदि हमारे पास नहीं है तो ऐसी स्थिति में किसान एक दूसरे के साथ बीजों का आदान प्रदान यानी कि विनिमय करते हैं, जिसके बदले में कहीं कोई पैसा नहीं देना होता है।
0: बिल्कुल।
1: यदि किसी किसान की फसल खराब हो जाती है तो गांव की

0: दूसरे किसान उनको बीज उपलब्ध कराते थे। इस प्रकार बीज सामाजिक सहयोग और सामुदायिक सुरक्षा का माध्यम भी है।
1: बिल्कुल,
0: बीज के चयन का कार्य बहुत महत्व रखता है। तो कटाई के समय खेत की जो सबसे अच्छे पौधे होते हैं उनको किसान चिन्हित करते हैं। इसमें जो बड़े दाने वाले, जैसे हम मक्का की बात करें तो बड़े भुट्टे या अन्य दाल वर्गीय फसलों की बात करें तो उड़द, मूंग, तुअर, इनमें जो सबसे बड़े दाने होते हैं और ज्यादा फली वाला जो पौधा होता है उनका चयन किया जाता है।
1: बिल्कुल,
0: इस प्रकार के पौधों से प्राप्त दाने जो हम बीज के लिए रखते हैं और अगली बुवाई में उनका उपयोग करते हैं।
1: बिल्कुल,
0: बीज चयन में सबसे महत्वपूर्ण यदि हम भूमिका की बात करें तो किसान साथियों, बीज चयन में महिलाओं की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण होती है।
1: जी जी,
0: वे बीजों की कटाई छटाई करने से लेकर सफाई, सुखाने, संरक्षण और भंडारण जैसे महत्वपूर्ण काम को पूरे साल संभालती हैं। परिवारों में बीज संरक्षण की जिम्मेदारी पूरी तरह से महिलाओं के पास होती है।
1: जी जी,
0: ये कहना कोई अतिशोक्ति नहीं होगा। और यही कारण है कि ग्रामीण महिलाओं को पारंपरिक बीज का ज्ञान एक जीवंत भंडार के रूप में माना जाता है।
1: बिल्कुल सर, आपने सही कहा। जैसा कि आप हमें बता रहे हैं कि हमारे वागड़ क्षेत्र के किसान भाई बहन जो है वो पारंपरिक बीज का प्रबंधन कैसे करते हैं और साथ ही महिलाओं की इसमें क्या भूमिका है। तो सर, अब यही मैं जानना चाहूंगी कि बीज के चयन की शुरुआत कहाँ से होती है, इसके लिए कौन कौन सी विशेष बातों का हमारे किसान भाई बहनों को ध्यान रखने की जरूरत होती है।
0: जी बिल्कुल, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। तो किसान साथियों, अगर हम बीज के चयन की बात करें तो खेत से ही शुरू होता है हमारे बीजों का उत्पादन। अक्सर किसान ये मानते हैं कि बीज उत्पादन फसल कटाई के समय शुरू होता है।
1: बिल्कुल,
0: जबकि वास्तविकता में देखा जाए तो बीज उत्पादन की प्रक्रिया बीज की बुआई से ही शुरू हो जाती है। यदि किसान को गुणवत्तापूर्ण बीज तैयार करना है तो पूरे मौसम के दौरान उसमें कई तरह की सावधानियां बरतनी होती है।
1: बिल्कुल,
0: जैसे बीज उत्पादन के लिए ऐसे खेत का चयन करें या ऐसी जगह का चयन करें जहां जल भराव की समस्या न होती हो, जहां की मिट्टी ज्यादा उपजाऊ हो, खरपतवार का नियंत्रण विशेष रूप से वहां पे उनको ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। खेत में जो बीज हम डाल रहे हैं जिससे हम अगला बीज तैयार करना चाहते हैं,
1: बिल्कुल,
0: उसकी गुणवत्ता, शुद्धता और उसका स्वस्थ होना बहुत जरूरी है। क्योंकि खराब बीज से अच्छी फसल या अच्छा बीज हम हासिल नहीं कर सकते।
1: जी हाँ।
0: तो फसल की बढ़वार के दौरान नियमित रूप से ये जाकर देखना जरूरी होता है कि खेत में या पौधों पे कोई कीट या बीमारी तो नहीं लग रही है, है ना? पौधे असमान तो नहीं है, कोई बहुत बड़ा हो रहा है, कोई बहुत छोटा हो रहा है। तो ये निरीक्षण लगातार करते रहना पड़ता है जिससे बीज की गुणवत्ता हम सुनिश्चित कर सकते हैं।
1: बिल्कुल सर, आपने सही बताया। जैसा कि आपने हमें बताया कि खेत से शुरू होता है बीज उत्पादन, श्रेष्ठ पौधे का चयन हमारे किसान भाई बहन कैसे कर सकते हैं?
0: तो किसान भाइयों, बीज चयन के लिए जो श्रेष्ठ पौधों का चयन होता है, तो बीज चयन के लिए केवल हमें दानों का चयन नहीं करना है बल्कि भविष्य की फसल का हम चयन कर रहे हैं, इस चीज को हमें याद रखना है। तो किसान भाई, जिस पौधे से भी बीज रखते हैं वो वास्तव में अगले साल की फसल की गुणवत्ता का निर्धारण करती है। यदि बीज अच्छे होंगे तो फसल अच्छी होगी।
1: बिल्कुल।
0: तो जैसा कि हम बात कर रहे हैं किसान भाइयों कि श्रेष्ठ पौधों का चयन, तो श्रेष्ठ पौधे के चयन के लिए हमारे नियमित निरीक्षण के आधार पर हमें एक जैसे पौधों का चयन करना है। दूसरा, हमें ऐसे पौधों का चयन करना है जो खेत में सबसे मजबूत स्थिति में हो।
1: जी जी,
0: जिस पे पूरे आकार के फल लगे हों और यदि एक से अधिक फल लगने वाली फसल है, तो जिसमें सबसे ज्यादा फलियां या दाने लगे हैं, इस तरह के पौधों का चयन हमको करना है।
1: बिल्कुल।
0: पौधे के चयन में हमको ये भी ध्यान रखना है कि किस पौधे ने कीटों या बीमारियों से बेहतर तरीके से लड़ के अपनी पैदावार को उत्पन्न किया है।
1: बिल्कुल।
0: तो यदि इस तरह से हम एक पौधे का चयन करते हैं और उससे बीज प्राप्त करते हैं, तो वो स्वस्थ, गुणवत्तापूर्ण और हम उस बीज को एक शक्तिशाली बीज बोल सकते हैं, जो कीटों और बीमारियों से बेहतर लड़ने की क्षमता अपने अंदर रखता है।
1: बिल्कुल सर, आपने सही कहा। यही अब हम जानना चाहेंगे कि बीज शुद्धता की पारंपरिक प्रक्रिया क्या है जो हमारे किसान भाई बहनों को ध्यान होनी चाहिए।
0: तो किसान भाइयों, बीज शुद्धता की पारंपरिक प्रक्रिया की यदि हम बात करें, तो फसल में मौजूद अवांछित पौधों को हमें निकाल देना चाहिए, जहां जो भी खरपतवार है, या फिर ऐसी फसल जो हमने नहीं लगाई है और जिसकी आवश्यकता या जरूरत हमें नहीं है। तो बीज उत्पादन में ये बीज की शुद्धता को निर्धारित करने की एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है।
1: बिल्कुल।
0: अगर हम ये नहीं करते हैं तो इससे बीज की जो शुद्धता है वो धीरे धीरे कम हो जाती है।
1: बिल्कुल सर, आपने सही कहा। जैसा कि कार्यक्रम में हम बीज प्रबंधन को लेकर ढेर सारी बातें आपके माध्यम से जान पा रहे हैं, यही बीज की सफाई और ग्रेडिंग का क्या महत्व है?
0: तो किसान साथियों, बीज की सफाई और ग्रेडिंग की यदि बात करें, तो बीज की सफाई केवल उसकी सुंदरता बढ़ाने का विषय नहीं है।
1: बिल्कुल।
0: ये उसकी गुणवत्ता का प्रश्न है। जब किसान बीजों की सफाई करते हैं तो वास्तव में वो फसल की गुणवत्ता सुधार रहे होते हैं। तो हमें छोटे दाने, टूटे हुए दाने या किसी तरह से रोगग्रस्त या कीटों के द्वारा खाए हुए दाने, इस तरह के दानों को अलग करना उसकी ग्रेडिंग का एक हिस्सा है। तो केवल पूरे भरे हुए, विकसित और स्वस्थ और भारी दानों को ही हमको बीज के रूप में उपयोग करना चाहिए। कई किसान पारंपरिक रूप से बीजों को उड़ा के भी देखते हैं, यानी कि हवा में से उनको नीचे गिराते हैं, जिससे ये पता चलता है कि कोई बीज यदि अंदर से किसी कीट ने खा लिया है और उसका छिलका ही बचा है, तो वो बीज इस तरह से अलग हो जाते हैं।
1: बिल्कुल।
0: इसी के साथ सामान्य रूप से कई सारे किसान साथी पानी में डुबाकर भी बीजों का निरीक्षण करते हैं कि जो बीज अच्छे होंगे वो नीचे बैठ जाएंगे और जो बीज गुणवत्तापूर्ण नहीं होंगे वो पानी के ऊपर तैरते हैं। तो इस तरह से भी खराब बीजों को और अच्छे बीजों को अलग किया जाता है और ये ग्रेडिंग के भाग हैं।
1: बिल्कुल सर, आपने सही कहा। जैसा कि आपने हमें कार्यक्रम में बहुत अच्छी तरीके से ढेर सारी बातों से अवगत करवाया है, तो अंत में आप हमारे कार्यक्रम के माध्यम से श्रोता साथियों को क्या संदेश देना चाहेंगे?
0: अंत में हमारे किसान साथियों के लिए मेरा यही संदेश है कि जिस तरह से आज की परिस्थितियां हैं, जलवायु परिवर्तन का प्रभाव हमारी खेती पर बहुत तेजी से पड़ रहा है, इस स्थिति में हमें निश्चित उत्पादन पाने के लिए अपने पारंपरिक बीजों का ही उपयोग करना चाहिए, क्योंकि ये हमारी जलवायु के अनुकूल है। ये कम पानी, ज्यादा पानी जैसी परिस्थितियों से लड़ने में सक्षम है।
1: बिल्कुल।
0: इसी के साथ इनमें अपनी एक बेहतर रोग प्रतिरोधक क्षमता है, जिससे हमें खेत में दूसरी तरह के अन्य खर्च करने की आवश्यकता कम से कम होती है।
1: बिल्कुल। तो सर, आपका धन्यवाद करना चाहूंगी कि आप हमारे कार्यक्रम से जुड़े और आपका कीमती समय आपने हमें दिया।
0: आपका, वागड़ रेडियो का और सुनने वाले सभी किसान साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद।
1: સૂટા પડવાનું સૂટા તો પડો પણ સાથે પહેલા હમરી લાઈક ઓર કીટ નું પડો સૂટા

जागृति दो आपके कार्य सोचू है अगर आप बिंदी रुकी जाएगा तो हूँ है नाना अंजलि बोन हूँ था का अरे जागृति बोन आपड़ी जो नदी है ये रुकी जाएगा खेतर मंजर थी जाएगा ने आपड़ो जीवन जो है ये भी रुकी जाएगा ओ अंजलि बोन इतने मन का कहे कि पानी तो काल है पानी थकीस आपड़ो जीवन है होवे जागृति बोन हर बूंद में आपड़ो जीवन है ये आज धरती माता नो संबल है होवे अंजलि बोन आपड़े भाई बहन थकी आपड़े अनुरोध करा कि मन ने खुल्लो नी राखो बारिश ने पानी नो संग्रह करो आज नानी नानी आदत बदलंगा तो आपड़ो ने आपड़ी अब्बा वाली पीढ़ी ने जीवन सफल थई सका होवे होवे जागृति बोन आपड़े भाई बहनों ने कहो कि पानी बचाओ ने अपनी धरती में हरी भरी राखो जल जीवन है आ अपनी पहचान है हर बूंद मोल आपड़े जानो वाघ रेडियो वाघ धारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित

0: कार्यक्रम सच्चा स्वराज में आप सभी श्रोता साथियों का स्वागत है।
1: जी हाँ साथियों, मैं हूँ आप सभी के साथ आपके अपने साथी जागृति भट्ट,
0: और मैं हूँ आप सभी के साथ आपके अपने साथी अंजलि पाराशर।
1: स्वीकार करें हम दोनों का प्यार भरा
0: नमस्कार। जी हाँ श्रोता साथियों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वगड़ रेडियो 90.8 FM पर।
1: लेकर हाजिर है श्रोताओं कार्यक्रम सच्चा स्वराज को एक नए विषय के साथ में। आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारी आपसे बातचीत का विषय रहने वाला है, स्थानीय ज्ञान और परंपराएं हमारी असली ताकत किस तरह से है। जैसा कि श्रोताओं आप जरा कल्पना कीजिए कि एक ऐसा गांव है जहां लोगों को मौसम के बदलने का अंदाजा प्रकृति के संकेतों से हो जाता है, जहां बुजुर्गों को पता है कि किस मिट्टी में कौन सी फसल अच्छी होगी, किस पेड़ का क्या महत्व है और बारिश के पानी को कैसे बचाया जा सकता है।
0: बिल्कुल।
1: जहां लोक गीतों में इतिहास छिपा है, कहावतों में जीवन का अनुभव है और त्योहारों में लोगों को एक दूसरे से जोड़ने की शक्ति है। क्या आपने कभी सोचा है कि ये ज्ञान कहां से आया, किसने इसे सीखा और किसने अगली पीढ़ी तक पहुंचाया?
0: बिल्कुल।
1: ये ज्ञान किसी किताब या विद्या

0: संग्रहालय तक सीमित नहीं है श्रोताओं, यह हमारे पूर्वजों के वर्षों के अनुभव, प्रकृति के साथ उनके संबंध और सामूहिक जीवन से विकसित हुआ है। यही हमारा स्थानीय ज्ञान है और यही हमारी परंपराओं की असली ताकत है।
1: बिल्कुल। तो जागृति जी, आज के समय में जब दुनिया तेजी से बदल रही है, तब हमें अपने आप से एक सवाल जरूर पूछना चाहिए कि क्या विकास का अर्थ केवल नई तकनीक अपनाना है, या अपने पुराने अनुभवों से सीखकर भविष्य को बेहतर बनाना भी विकास का हिस्सा है।
0: जी हाँ।
1: इन्हीं सवालों के साथ आज हमारी श्रोता साथियों से ढेर सारी बातें होने वाली है, लेकिन कार्यक्रम की शुरुआत में सुनते हैं इस प्यारे से गीत को। तो साथियों, आप बने रहिएगा वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

0: श्रोताओं, इस गीत के बाद हम फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे आज के कार्यक्रम शिक्षा स्वराज में। और जैसा कि गीत से पहले विषय से अवगत करवाया था कि आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारी आपसे बातचीत का विषय रहने वाला है, स्थानीय ज्ञान और परंपराएं हमारी असली ताकत किस तरह से है।
1: बिल्कुल, तो जागृति जी, जैसा कि गीत से पहले हमने जाना था कि किस तरीके से आज का जो समय है वो तेजी से बदल रहा है।
0: बिल्कुल,
1: यही बात आती है कि स्थानीय ज्ञान आखिरकार है क्या। तो श्रोता साथियों, स्थानीय ज्ञान वह ज्ञान है जो किसी क्षेत्र में रहने वाले लोगों ने अपने अनुभवों, जरूरतों, प्रयोगों और प्रकृति के अवलोकन से विकसित किया है। यह ज्ञान पीढ़ी दर पीढ़ी बातचीत, अभ्यास, कहानियों और दैनिक जीवन के माध्यम से आगे बढ़ता है।
0: बिल्कुल,
1: हमारे गांवों में किसान जानते हैं कि मिट्टी की प्रकृति कैसी है, कौन सी फसल किस मौसम में बोनी चाहिए और खेत की नमी को कैसे बचाए रखा जा सकता है। पशुपालकों को अपने पशु के व्यवहार और देखभाल का अनुभव होता है। जागृति जी, कारीगर अपने हाथों से ऐसी वस्तु बनाते हैं जिसमें वर्षों का अभ्यास और कौशल समाया होता है।
0: बिल्कुल अंजलि, क्योंकि इसी तरह स्थानीय समुदाय को अपने आसपास के जंगलों, जल स्रोतों, पौधों और मौसम के बारे में कई तरह की उपयोगी जानकारियां होती है। ये ज्ञान केवल जानकारी नहीं बल्कि जीवन जीने की एक पद्धति है। ये हमें सिखाता है कि उपलब्ध संसाधनों का समझदारी से उपयोग कैसे करें, जरूरत पड़ने पर एक दूसरे की सहायता कैसे करें और प्रकृति के साथ संतुलन बनाकर कैसे रहें।
1: बिल्कुल,
0: हालांकि हम देखते हैं कि स्थानीय ज्ञान के हर पहलू को बिना जांच के सही मान लेना भी उचित नहीं है। विशेष रूप से स्वास्थ्य, खेती और सुरक्षा से जुड़ी मान्यताओं को जरूरत के अनुसार वैज्ञानिक जानकारी और विशेषज्ञों की सलाह के साथ समझना होगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि स्थानीय ज्ञान और आधुनिक विज्ञान एक दूसरे के विरोधी नहीं है, बल्कि सही तरीके से उपयोग किए जाने पर एक दूसरे के सहयोगी बन सकते हैं।
1: बिल्कुल जागृति जी, यही बात आती है, हमारी परंपराएं हमारी पहचान है। जी हाँ श्रोता साथियों, परंपराएं किसी भी समाज की पहचान होती है। ये हमें अपने इतिहास, अपने पूर्वजों और अपने समुदाय से जोड़ती है। हमारे घरों में मनाए जाने वाले त्योहार, गाँव के मेले, विवाह के गीत, जन्म और दूसरे महत्वपूर्ण अवसरों से जुड़े रीति रिवाज, लोक नृत्य और लोक कथाएं, ये सभी हमारी सांस्कृतिक विरासत के हिस्से हैं। भागड़ जैसे क्षेत्र में जागृति जी, स्थानीय भाषा, लोक संगीत, पारंपरिक वेशभूषा, सामुदायिक उत्सव और प्रकृति से जुड़े जीवन के तरीके हमारी सांस्कृतिक पहचान को विशेष बनाते हैं।
0: बिल्कुल,
1: लोकगीतों में केवल मनोरंजन नहीं होता, उनमें खेती किसानों की बातें, रिश्तों की मिठास, संघर्षों की कहानियाँ और जीवन के अनुभव भी मिलते हैं। लोक कथाएं बच्चों को साहस, समझदारी, सहयोग और जिम्मेदारी जैसे सीख दे सकती है।
0: बिल्कुल,
1: इसी प्रकार श्रोता साथियों, कई परंपराएं लोगों को एक साथ बैठने, मिलकर काम करने और सुख दुख में एक दूसरे का साथ देने का अवसर देती हैं। लेकिन हमें ये भी समझना होगा कि परंपराओं का सम्मान करने का अर्थ हर पुरानी परंपरा को हमेशा बनाए रखना नहीं है। जो परंपराएं समानता, सम्मान, सहयोग और प्रकृति की रक्षा को बढ़ावा देती है, उन्हें जागृति जी हमें आगे बढ़ाना है। जो प्रथाएं किसी के साथ भेदभाव करती है या नुकसान पहुँचाती है, उनमें सुधार करना चाहिए। क्योंकि परंपराओं की असली शक्ति तभी है जब वे हमारी पहचान के साथ साथ हमारे समाज को बेहतर बनाने का काम भी करें।
0: बिल्कुल अंजलि, इसी के साथ प्रकृति से जुड़े स्थानीय ज्ञान को लेकर हम बात करें तो श्रोताओं, हमारे पूर्वजों का जीवन प्रकृति के बहुत करीब था। ये हम सभी जानते थे कि पानी, मिट्टी, जंगल और पशु पक्षी केवल संसाधन नहीं बल्कि जीवन के आधार है। कई गाँव में अंजलि तालाब, कुएं, बावड़ियां और दूसरे पारंपरिक जल स्रोत सामुदायिक जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा रहे हैं। वर्षा जल को इकट्ठा करना, जल स्रोतों की सफाई करना और पानी का सोच समझकर उपयोग करना जल संरक्षण के ऐसे तरीके हैं जिनसे आज भी बहुत कुछ सीखा जा सकता है। इसी तरह श्रोताओं, स्थानीय पेड़ों और वनस्पतियों की पहचान, बीजों को सुरक्षित रखना और मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने के पारंपरिक तरीके पर्यावरण संरक्षण में सहायक हो सकते हैं।
1: बिल्कुल,
0: हमारे आसपास के जंगलों में हम देखते हैं कि कई प्रकार के पौधे और जीव पाए जाते हैं। श्रोताओं, स्थानीय समुदाय के अनुभव से हमें इनके महत्व के बारे में जानने का अवसर भी मिलता है। जब किसी समुदाय का जंगल से गहरा संबंध होता है अंजलि, तो वो जंगल की रक्षा, आग से बचाव और प्राकृतिक संसाधनों के संतुलित उपयोग में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। आज जलवायु परिवर्तन, अनियमित वर्षा और बढ़ते तापमान जैसी चुनौतियां हमारे सामने है। ऐसे समय में स्थानीय अनुभव को आधुनिक वैज्ञानिक जानकारी के साथ जोड़ना बहुत उपयोगी हो सकता है। हमें अपने गांव में देखना होगा कि कहां वर्षा का पानी व्यर्थ बह रहा है, कौन से पारंपरिक जल स्रोत फिर से उपयोगी बनाए जा सकते हैं और स्थानीय पौधों को कैसे सुरक्षित रखा जा सकता है। याद रखिए श्रोताओं, प्रकृति की रक्षा के लिए हमेशा बड़े साधनों की आवश्यकता नहीं होती। कई बार एक छोटा तालाब साफ करना, पेड़ लगाना, पानी बचाना और लोगों को जागरूक करना भी बड़ा बदलाव ला सकता है।
1: बिल्कुल, तो जागृति जी, जैसा कि आज कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं स्थानीय ज्ञान और परंपराएं हमारी असली ताकत कैसे हैं इसको लेकर, तो बातें और भी यूं ही कार्यक्रम में आगे निरंतर बनी रहेंगी, लेकिन अभी कर लेते हैं मनोरंजन एक और प्यारे से गीत के साथ में।
0: बिल्कुल।

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम सच्चा स्वराज में। जैसा कि गीत से पहले हमने जाना था, प्रकृति से जुड़ा स्थानीय ज्ञान के बारे में यही बात करें स्थानीय खेती और खाद्य परंपराओं की ताकत की, तो हम कहना चाहेंगे श्रोता साथियों कि भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था में खेती का विशेष स्थान है। हमारे किसान पीढ़ियों से मिट्टी, मौसम, बीज, फसलों के बीच के संबंध को समझते आए हैं। कई क्षेत्रों में जागृति जी स्थानीय परिस्थितियों के अनुकूल फसलें उगाने, अलग अलग फसलों को अपनाने, बीजों को सुरक्षित रखने और पशुपालकों को खेती से जोड़ने की परंपरा रही है। नागर क्षेत्र में मक्का और अलग अलग स्थानीय अनाजों का भोजन ग्रामीण जीवन में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। स्थानीय खान पान में मौसम, उपलब्धता और परिवार की जरूरतों को भी ध्यान में रखा जाता है। मोटे अनाज और अलग अलग खाद्य पदार्थों को अपनाने से भोजन में विविधता बढ़ सकती है। स्थानीय स्तर पर उपलब्ध खाद्य पदार्थ का उचित उपयोग श्रोता साथियों किसानों और छोटे उत्पादकों की आजीविका में भी सहयोग दे सकता है।
1: बिल्कुल अंजलि, और इसी के साथ लोक कला, हस्तशिल्प और स्थानीय कौशल की बात करें तो श्रोताओं, किसी क्षेत्र की पहचान केवल उसके इतिहास या भूगोल से नहीं बनती, बल्कि वहाँ के लोगों के हुनर से भी बनती है। हम देखते हैं अंजलि कि मिट्टी के बर्तन बनाना, बांस या लकड़ी से उपयोगी वस्तुएं तैयार करना, कपड़े बुनना, कढ़ाई करना, पारंपरिक आभूषण बनाना, लोक संगीत प्रस्तुत करना, ये सभी स्थानीय कौशल और कला के उदाहरण हैं। इन कलाओं के पीछे केवल हाथ का हुनर नहीं है, बल्कि धैर्य, अभ्यास और पीढ़ियों का अनुभव भी है। हमें समझना होगा श्रोताओं कि स्थानीय कौशल कोई छोटी चीज नहीं है। ये कौशल किसी परिवार की आजीविका है, किसी समुदाय की पहचान है और किसी क्षेत्र की आर्थिक मजबूती का आधार बन सकता है।
0: बिल्कुल जागृति जी, यही बात आती है बुजुर्गों के अनुभव और नई पीढ़ी की जिम्मेदारी की। तो श्रोता साथियों, हमारे घरों और गांवों में बुजुर्ग अनुभव के महत्वपूर्ण स्रोत हैं।
1: बिल्कुल,
0: उन्होंने अपने जीवन में कई बदलाव देखे होते हैं। उनके पास मौसम, खेती, लोक कथाओं, पारंपरिक संबंधों, सामाजिक सहयोग और स्थानीय इतिहास से जुड़ी अनेक यादें होती हैं। लेकिन आज का जीवन जो है वो तेज गति, मोबाइल फोन और बदलती दिनचर्या के कारण कई बार नई पीढ़ी को बुजुर्गों के साथ बैठकर बातचीत करने का अवसर कम मिलता है। यदि हम अपने स्थानीय ज्ञान को सुरक्षित रखना चाहते हैं तो हमें पीढ़ियों के बीच संवाद को बढ़ाना होगा। हम बच्चों और युवाओं को अपने दादा दादी, नाना नानी और गांव के अनुभवी लोगों से सवाल पूछने को कह सकते हैं। वे पुराने लोकगीत रिकॉर्ड कर सकते हैं, कहावतों के अर्थ लिख सकते हैं और गांव के पुराने तालाबों, मेलों और परंपराओं की कहानियां संकलित कर सकते हैं।
1: बिल्कुल,
0: श्रोता साथियों कहना चाहेंगे कि रेडियो भी इस काम में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। वागर रेडियो 90.8 FM के माध्यम से स्थानीय लोगों के अनुभव, लोकगीत, खेती से जुड़ी जानकारी और परंपराओं की कहानियां अधिक लोगों तक हम समय समय पर पहुंचाने की कोशिश करते हैं। इस तरह ज्ञान केवल एक व्यक्ति तक सीमित नहीं रहता, बल्कि जागृति जी पूरे समुदाय की साझा धरोहर बन सकेगा।
1: बिल्कुल अंजलि, इसलिए कहा गया है कि जिस समाज की नई पीढ़ी अपने बुजुर्गों के अनुभव को सुनती है और उन्हें समझकर आगे बढ़ती है, वो समाज अपनी जड़ों से जुड़े रहते हुए भी नए रास्ते बना सकता है। साथ ही श्रोताओं, आपको बताना चाहेंगे कि आज हमारे पास मोबाइल फोन, इंटरनेट, डिजिटल कैमरे और अनेक आधुनिक साधन हैं। इनका उपयोग करके स्थानीय ज्ञान को सुरक्षित रखना पहले से आसान हो गया है। मान लीजिए श्रोताओं की किसी गांव के बुजुर्गों को पुराने जल स्रोतों के बारे में जानकारी देनी है।
0: बिल्कुल,
1: हमारे युवा उनसे बातचीत रिकॉर्ड कर सकते हैं। अंजलि, किसी किसान के पास बीज सुरक्षित रखने का अनुभव है तो उसकी जानकारी वीडियो या लिखित रूप में संकलित की जा सकती है। लोकगीतों और कहावतों को रिकॉर्ड करके भविष्य के लिए सुरक्षित रखा जा सकता है। इसी तरह स्थानीय कलाकार अपने हुनर की जानकारी सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों तक पहुंचा सकता है। तो हम

0: कह सकते हैं श्रोताओं कि हम नई तकनीक अपनाए, शिक्षा प्राप्त करें, वैज्ञानिक सोच विकसित करें और साथ ही अपने समाज के उपयोगी ज्ञान को भी सुरक्षित रखें, यही संतुलन हमें मजबूत बना सकता है।
1: बिल्कुल जागृति जी, कहना चाहेंगे कि स्वराज का अर्थ केवल शासन व्यवस्था में स्वतंत्रता प्राप्त करना नहीं है।
0: बिल्कुल,
1: इसका एक महत्वपूर्ण पहलू यह भी है कि समाज अपने निर्णय समझदारी से ले, अपनी जरूरतों को पहचाने, स्थानीय संसाधनों का उचित उपयोग करके आगे बढ़े, क्योंकि जब गांव के लोग मिलकर अपने जल स्रोतों की रक्षा करते हैं, स्थानीय खेती को बेहतर बनाने के उपाय खोजते हैं, कारीगरों को प्रोत्साहन देते हैं और बच्चों को अपनी संस्कृति से जोड़ते हैं, तब आत्मनिर्भरता की नींव मजबूत होती है।
0: बिल्कुल,
1: हमें ये भी समझना होगा कि हर गांव का ज्ञान और हर क्षेत्र की परंपराएं अलग हो सकती हैं, इसलिए विकास की योजना बनाते समय स्थानीय लोगों की बात सुनना और उनकी जरूरतों को समझना जरूरी है। यही सच्ची स्वराज की भावना है, अपने समाज को समझना, अपने निर्णयों में भागीदारी करना और अपनी ताकत को पहचान कर सामूहिक विकास की दिशा में आगे बढ़ना।
0: बिल्कुल, तो अंत में हमारे श्रोता साथियों को इस कार्यक्रम के माध्यम से यही कहना चाहेंगे कि श्रोताओं, आज की चर्चा से हमने जाना कि स्थानीय ज्ञान और परंपराएं हमारे जीवन के अनमोल धरोहर है। इनमें हमारे पूर्वजों के अनुभव, प्रकृति के साथ हमारा संबंध, हमारी सांस्कृतिक पहचान और आत्मनिर्भर समाज बनाने की संभावनाएं छिपी हुई है। हमें अपनी परंपराओं को केवल अतीत की याद बनाकर नहीं रखना है, बल्कि उनसे सीखकर वर्तमान को बेहतर और भविष्य को मजबूत बनाना है। हमें अपने बुजुर्गों के अनुभव सुनने हैं, किसानों के ज्ञानों का सम्मान करना है, स्थानीय कलाकारों के हुनर को प्रोत्साहित करना है, प्रकृति की रक्षा करनी है और उपयोगी परंपराओं को नई पीढ़ी तक पहुंचाना है। साथ ही जहां जरूरत हो वहां वैज्ञानिक सोच के आधार पर सुधार भी करना है, क्योंकि जीवंत परंपरा वही है जो समय के साथ सीखती है, आगे बढ़ती है और समाज को मजबूत बनाती है। इसलिए आइए श्रोता साथियों, हम अपने गांव की किसी एक उपयोगी परंपरा, लोकगीत, कहावत, खेती के अनुभव या जल संरक्षण के तरीकों को पहचानेंगे और उसे सुरक्षित रखने का प्रयास करेंगे। याद रखिए, अपनी जड़ों को पहचानना पीछे लौटना नहीं बल्कि मजबूत होकर आगे बढ़ना है।
1: बिल्कुल जागृति जी, इसलिए श्रोता साथियों, स्थानीय ज्ञान हमारी परंपरा है, हमारी अपनी विरासत है और सामूहिक प्रयास हमारी ताकत है। जब हम अपनी मिट्टी, अपने लोगों और अपने अनुभवों का सम्मान करेंगे, तभी आत्मनिर्भर समाज और सच्चे स्वराज का सपना साकार करने की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं।
0: बिल्कुल,
1: इसी संदेश के साथ जागृति जी, अब कार्यक्रम सच्चा स्वराज से हम विदा लेते हैं। विदा जरूर लेंगे, लेकिन जाने से पहले सुन लेते हैं एक और प्यारा सा गीत।
0: जी हाँ।

0: साथियों, इस गीत के साथ ही आज के इस कार्यक्रम को यही विराम देते हैं। और जैसा कि आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से जो भी बातें रही वो बातें आपको जरूर पसंद आई होंगी, ऐसी उम्मीद भी करते हैं। इन्हीं उम्मीदों के साथ आपको हमारा आज का कार्यक्रम कैसा लगा उसके लिए आप अपने राय सुझाव हम तक जरूर पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
1: जी हाँ श्रोता साथियों, लिख लीजिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम सच्चा स्वराज, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कोपड़ा, वागथरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9414082643।
0: इसी के साथ साथियों, आप अपनी प्रतिक्रिया हमें हमारी ईमेल आईडी पर भी दे सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org।
1: तो श्रोता साथियों, फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में इसी समय एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपके अपने साथी अंजलि पाराशर
0: और आपके अपने साथी जागृति भट्ट को।
1: नमस्कार।

बारी में पासो लावो चूनू हवा, सेहत बनेगा एकदम शानदार। बाजरा, ज्वार, रागी, नमक का ताकत भी भरपूर ने पोषण भी पक्कू। बारती नु खवानो सोड़ो, देशी अनाज तकी ना तो जोड़ो। मोटू अनाज अपनावंगा, शरीर में स्वस्थ राकंगा। बागल रेडियो एवं बागधरा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

नमस्कार साथियों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो फगर रेडियो नगरिश्मा आटा फन पर। मैं हूँ आप सभी के साथ आपके अपने साथी अंजलि पारेषर और आप सभी का तहे से स्वागत करती हूँ कार्यक्रम सपनों की उड़ान में। जी हाँ श्रोता साथी, कहा जाता है कि इंसान जैसा वातावरण देखता है वैसे बातें सुनता है और जिन लोगों के बीच समय बिताता है उसकी सोच पर असर भी उनका पड़ता है। जरा सोचिए कि घर में किसी बच्चे को बार बार कहा जाए कि तुमसे ये नहीं होगा तो उनके मन में अपने बारे में कैसे धारणा बन सकती है, और अगर उसी बच्चे को कोई यह कहे कि कोशिश करके देखो गलती होगी तो साथ में सीखेंगे तो शायद उसके भीतर कुछ नया करने की इच्छा पैदा हो। जी हाँ दोस्तों, हमारे आसपास के लोग हमारी जिंदगी के फैसले सीधे तौर पर तय नहीं करते, लेकिन उनकी बातें व्यवहार और सोच हमारे विचारों को प्रभावित कर सकते हैं। इसलिए आज कार्यक्रम में हम बात करेंगे कि हमारे आसपास के लोग हमारी सोच को कैसे प्रभावित करते हैं, क्योंकि संगत केवल साथ चलने का नाम नहीं होती, हमारी सोच को दिशा देने वाली शक्ति भी होती है। तो बातें ढेर सारी होंगी, लेकिन कार्यक्रम की शुरुआत में सुनते हैं इस प्यारे से गीत को। आप बने रहिएगा वेब रेडियो नगर आटा फोन पर आपके अपने साथी अंजलि पारेषर के साथ में।

बारों फिर से आप सभी का तहे दिल से स्वागत करते हैं कार्यक्रम सपनों की उड़ान में। जैसा कि मैंने गीत से पहले आपको विषय से रूबरू कराया था कि आज हम बात करने वाले हैं कि हमारे आसपास के लोग हमारी सोच को कैसे प्रभावित करते हैं, तो इसमें सबसे पहले बात आती है कि आसपास का माहौल जो है वो हमारी सोच की पहली पाठशाला होता है। जी हाँ, बचपन से ही हम अपने आसपास के लोगों को देखकर बहुत कुछ सीखते हैं। घर में बड़े बुजुर्ग कैसे बात करते हैं, माता पिता समस्याओं को किस नजर से देखते हैं, शिक्षक बच्चों की बात कैसे सुनते हैं, और इन सभी चीजों का प्रभाव हमारी सोच पर पड़ सकता है। इसलिए बच्चों के सामने केवल यह कहना काफी नहीं है कि अच्छा सोचो, उन्हें अपने व्यवहार से भी सकारात्मक उदाहरण हमें प्रस्तुत करने की जरूरत है। बहुत सी बार हम देखते हैं कि किसी की कही हुई बात कई बार लंबे समय तक हमारे मन में रहती है। अगर कोई बार बार हमारी कमी की ओर ध्यान दिलाता है तो हम अपने बारे में संदेह करने लगते हैं कि वास्तव में वो व्यक्ति सही तो नहीं कह रहा। वहीं किसी व्यक्ति का भरोसा और प्रोत्साहन हमें अपनी क्षमता को पहचानने में मदद कर सकता है। इसका अर्थ यह नहीं है कि हर आलोचना गलत है। सही आलोचना हमें अपनी गलती को समझा सकती है, लेकिन अपमान और लगातार हतोत्साहित करना अलग बात होती है। इसलिए लोगों की बातें हमारे आत्मविश्वास को भी प्रभावित कर सकती है। अगर कोई व्यक्ति है जो हमें हमारी कमी बता रहा है, अगर वो व्यक्ति पर हमें भरोसा है कि वाकई वो व्यक्ति हमारे लिए हमेशा अच्छा सोचता है, तो हमें उसकी बातों पर विश्वास करने की जरूरत है और हमारी उस कमी पर हमें ध्यान देना होगा। लेकिन हमें लगता है कि वो सामने वाला व्यक्ति हमेशा ही हमारी आलोचना करता रहता है, हर किसी चीज में हमारी कमी निकालता रहता है, तो हमें उसकी बातों से हतोत्साहित होने की जरूरत नहीं है, हमें अपनी राह को बदल लेना चाहिए। इसी के साथ हम देखते हैं कि युवा और बच्चों के जीवन में दोस्तों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि दोस्त हमें नई गतिविधियाँ, किताबें, खेलने, तकनीक और नए विचारों से परिचित करा सकते हैं। लेकिन दोस्ती में अपनी समझ बनाना भी जरूरी है। बहुत सी बार ऐसा होता है कि कई दोस्त बहुत सारी ऐसी चीजें करते हैं जो सही नहीं होती है, और हम चाहते हैं कि वो चीज हम करें क्योंकि बाकी सब लोग कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं हमें करना है, क्योंकि हमारे जो माता पिता हैं वो हमारे लिए बहुत सारी चीजें सोच कर रखते हैं। अगर वो चाहते हैं कि जो सभी लोग कर रहे हैं वो हमारे लिए सही नहीं है, तो हमें वो चीज नहीं करनी है। अच्छा दोस्त वो होता है जिसके साथ हम अपनी बातें कह सकें, कुछ नया सीख सकें और गलत रास्ते पर जाने से एक दूसरे को रोक सकें। कई बार आसपास के लोग अनजाने में हमारी तुलना करने लगते हैं। देखो उनका बच्चा किताब कितनी अच्छी पढ़ता है, उसने इतनी जल्दी अपना काम शुरू भी कर दिया। दूसरे लोग तो यह कह रहे हैं कि तुम क्यों नहीं कर सकते। ऐसी जो बातें हैं वो लगातार व्यक्ति को अपनी परिस्थिति और खूबियों को देखने के बजाय दूसरों से खुद को मापने की आदत डाल सकती है। श्रोता साथी कहना चाहेंगे कि हर व्यक्ति की परिस्थिति, रुचि और सीखने की गति अलग होती है, इसलिए दूसरों से सीखना अच्छी बात है, लेकिन अपनी पहचान दूसरों की जिंदगी से तय करना जरूरी नहीं है। इसलिए तुलना जहाँ पर भी हमारी हो वहाँ से हमें दूर हो जाना है, क्योंकि तुलना एक ऐसी चीज है जो हमें नकारात्मक सोचियो प्रभावित भी कर सकती है। और बहुत सी बार जो व्यक्ति तुलना करता है उसे भी ये सोचना चाहिए कि इससे बच्चों के मन पर और किसी व्यक्ति के मन पर विपरीत प्रभाव पड़ सकता है, उन दोनों के बीच में द्वेष भी हो सकता है। इसलिए हमें कभी भी किसी भी व्यक्ति की तुलना किसी दूसरे व्यक्ति से नहीं करनी है। तो जैसा कि कार्यक्रम में हम बहुत अच्छी तरीके से ये जान रहे हैं कि हमारे आसपास के लोगों की सोच हमें किस तरीके से प्रभावित कर सकती है और इससे हमें कैसे बचना है।

साथ ही इस गीत के बारे में फिर से रुक करते हैं हमारी बातचीत की ओर। जैसा कि गीत से पहले हमने जाना कि आसपास का माहौल हमारी सोच की पहली पाठशाला है। लोगों की बातें हमारे आत्मविश्वास को प्रभावित करती हैं। दोस्त हमारी सोच में नई चीजें जोड़ सकते हैं। इसी के साथ तुलना हमारी सोच को प्रभावित करती है। यह बात आती है कि घर का माहौल बच्चों के विचारों को आकार देता है। जी हाँ, बच्चे केवल हमारी बातें नहीं सुनते, वे हमारा व्यवहार भी देखते हैं। अगर घर में किसी की बात ध्यान से सुनी जाती है, गलती पर समझाया जाता है और सवाल पूछने की आजादी होती है, तो बच्चे खुद अपनी बात रखना सीख सकते हैं। वहीं अगर हर सवाल पर उन्हें डांट दिया जाए, तो वे धीरे धीरे सवाल पूछना ही बंद कर सकते हैं। इसलिए घर में ऐसा माहौल बनाना जरूरी है जहाँ बच्चे कह सके कि मैं अपनी बात कह सकता हूँ, वो मेरी बात सुनी जाएगी। यही हम कहना चाहेंगे कि समाज हमारे पसंद और फैसलों को भी प्रभावित करता है। कई बार हमारे गांव और समुदाय में कई तरह की धारणाएं होती हैं कि कौन सा काम करना चाहिए, कौन सी पढ़ाई करनी चाहिए, लड़के और लड़कियों से क्या उम्मीद रखनी चाहिए। ये सभी बहुत सी बार लड़कियाँ कुछ नया कौशल सीखना चाहती है तो उनको भी रोक दिया जाता है। तो ऐसे समाज से मिलने वाली अच्छी सीख को अपनाना जरूरी है, लेकिन हर पुरानी धारणा को बिना सोचे स्वीकार करना भी जरूरी नहीं होता है। जो बात इंसान, परिवार और समुदाय के विकास में मदद करे, उसे समझकर अपनाएं, और जो बात छोटा साथी भेदभाव और नुकसान बढ़ाए, उस पर सवाल करना भी सीखना जरूरी है। हर व्यक्ति हमें किसी न किसी तरह प्रभावित कर सकता है, इसलिए समय पर खुद से पूछना उपयोगी हो सकता है कि मैं जिन लोगों के साथ सबसे ज्यादा समय बिताता हूँ, उनसे कौन सी बातें मेरी सोच में आ रही है। क्या हम दूसरों की अच्छी आदतें अपना रहे हैं? क्या कोई हमें हमेशा नकारात्मक सोचने के लिए मजबूर कर रहा है? क्या हमारे आसपास ऐसे लोग हैं जिनसे हम कुछ नया सीख सकते हैं? इन सवालों पर विचार करने से हमें अपने सामाजिक वातावरण को बेहतर ढंग से समझने में मदद मिल सकती है। इसलिए श्रोता साथियों, हमारी सोच केवल किताबों से नहीं बनती, घर की बातचीत, दोस्तों का व्यवहार, शिक्षक की सीख, पड़ोस का माहौल और समाज में होने वाली छोटी छोटी घटनाएं भी हमें कुछ न कुछ सिखाती हैं। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है कि हम केवल प्रभावित होने वाले व्यक्ति नहीं, बल्कि हम दूसरों को प्रभावित करने वाले व्यक्ति भी हैं। इसलिए हमारी एक अच्छी बात किसी बच्चे का हौसला बढ़ा सकती है। हमारी किसी की बात ध्यान से सुनने की आदत किसी को अपनी बात कहने का विश्वास दे सकती है। किसी जरूरतमंद की मदद देखकर दूसरा व्यक्ति भी मदद के लिए आगे आ सकता है। इसलिए अपने आसपास के माहौल को बेहतर बनाने की शुरुआत किसी और से करने के बजाय हम खुद से कर सकते हैं। कर्म समूह से बात करना, बच्चों को सवाल पूछने देना, युवाओं को अपनी बात रखने का अवसर देना और दूसरों की परिस्थितियों को समझने की कोशिश करना, ये छोटे कदम हमारे समुदाय की सोच में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। और शायद सपनों के उड़ान का असली अर्थ भी यही है कि अपने सपनों के साथ साथ ऐसा माहौल बनाना जहाँ हमारे आस पास रहने वाले दूसरे लोग भी अपने सपनों को पहचान कर उन्हें आगे बढ़ाने की जगह पा सके। इसलिए श्रोता साथियों, आपकी सोच आपकी पहचान बनाती है, लेकिन आपकी सोच से किसी और की दुनिया भी बदल सकती है। इसलिए ऐसा बनिए जिससे आपके आसपास उन्नति बढ़े। तो जैसा कि श्रोता साथियों, आज कार्यक्रम में हमारे आपसे बहुत ही अच्छी बातें रही है कि किस तरीके से हमारे आसपास की सोच हमारे जीवन को प्रभावित कर सकती है। इसलिए हमें नकारात्मक सोच से बचना है और सकारात्मक सोच को अपनाना है। तो आशा करती हूँ कि ये सभी बातें आपको अवश्य पसंद आई होगी। अब समय हो चला है कार्यक्रम से विदा लेने का। विदा जरूर लूंगी, लेकिन जाने से पहले सुन लेते हैं एक और प्यारा सा गीत।

साथियों, हमारे आसपास के लोग हमारी सोच का आईना बन सकते हैं, लेकिन उस आईने में क्या देखना है ये चुनाव हमारा है। संगत का असर धीरे धीरे होता है, लेकिन हमारी आदतें और सोच में गहरी छाप छोड़ सकता है। इसलिए हमेशा ऐसा माहौल और ऐसी सकारात्मक सोच को अपनाएं जो हमें हमारे जीवन को आगे और सफल बनाने के लिए प्रेरित कर सके। तो दोस्तों, आपको मेरा आज का कार्यक्रम कैसा लगा, उसके लिए आप अपने राय सुझाव हमें पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर। हमारा पता लिखिए, कार्यक्रम सपनों की उड़ान वाग रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागधरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 3201। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9416082643। तो दोस्तों, फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में इसी समय में प्रेरणादायक बातों के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति कार्यक्रम सपनों के उड़ान से जाने की अनुमति आपके अपने साथी अंजलि परमेश्वर को। इसी अनुमति के साथ नमस्कार।

0: जागृति दो, आप एक कार्य सोचू है, अगर आप बिंदी रुकी जाएंगा तो हूँ था
1: नाना अंजलि बोन हूँ था का
0: अरे जागृति बोन आपड़ी जे नदी है ये रुकी जाएंगा खेतर बंजर थी जाएंगा ने आपड़ो जीवन जे है ये भी रुकी जागा ओ अंजलि बोन इतने से नम का कहे कि पानी तो काल है पानी तो किस आपड़ो जीवन है होवे जागृति बोन हर बूंद में आपड़ो जीवन है ये आज धरती माता नु संबल है होवे अंजलि बोन आपड़े भाई बहन थकी आपड़े अनुरोध करा कि नल ने खुल्लो नी राखो बारिश ने पानी नो संग्रह करो आज नानी नानी आदत बदलंगा तो आपड़ो ने आपड़ी अंबावारी पीढ़ी नु जीवन सफल थई सका होवे होवे जागृति बोन आपड़े भाई बहनों ने कहो कि पानी बचाओ ने अपनी धरती में हरी भरी राखो जल जीवन है आ अपनी पहचान है हर बूंद मोल आपड़े जानो वाग रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित सेहत में राज हूँ है बोन असल आदत में सही खुराक है बोन जिम के पैदा की शुरुआत पानी तक ही करो थोड़ा सो व्यायाम ये तात्कालिक जीवन जीवन फल सब्जी रोजे खाओ बीमारी में दूर भगावा जंक फूड तक दूर रह नींद पूरी लो ने खुश रहो ओवे सेहत है असली धन आपो आज जीवन में सहारो है आज तक इस आवाज में अपनाऊंगा ने जीवन में स्वस्थ बनाऊंगा होवे स्वस्थ रहो खुश रहो क्योंकि आज है सेहत में असली राज वाग रेडियो वाग धारा संस्था द्वारा

0: दोस्तों, अगर चाहो तेज दिमाग और स्वस्थ जीवन तो आयरन युक्त तत्वों से भरपूर करें भोजन। खून में आयरन तत्वों की कमी होने पर एनीमिया रोग हो सकता है, जल्दी थकान होना, शारीरिक कमजोरी, याददाश्त में कमी, सांस फूलना, ये सभी एनीमिया के ही लक्षण हैं। लक्षण महसूस होने पर साथियों, अपने नजदीकी राजकीय स्वास्थ्य केंद्र में एनीमिया की निःशुल्क जाँच जरूर करवाएं। हीमोग्लोबिन का स्तर 7 से कम होना अति गंभीर स्थिति को दर्शाता है। ऐसी स्थिति में चिकित्सक को जरूर दिखाएं और उचित उपचार लें। वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
1: आप अगर विचार कर रहे हैं कि जिला पानी छाने अपने रह आपने कितने शांति मिली, जिला में आपने हार ले है, ये भी अपने थकी कई आश लागे है। हवा अगर पेड़ में रहेगा तो अपने हरते जीवन में प्रकृति अपनी जरूरत नहीं बल्कि अपनी जिम्मेदारी है। एक पेड़ लगाऊंगा, पेड़ में बचा लूंगा, मैं अपने धरती में जीवन दान मांगूंगा।
2: होवे प्रकृति में बचा हुआ भविष्य में हदारू।
1: होवे आज उन्होंने कदम है, ये अदावारा काल में बदलाव की शुरुआत है। वागड़ रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

ये गजल मैंने मेरे से बहुत दिनों में इसकी धुन बनी, मैं पेश कर रहा हूँ। ये मोमिन खामोमिन की गजल है जिसका मतलब है, रोया करेंगे आप भी पहरों इसी तरह, अटका कहीं जो आप

श्रोता साथियों, यह तो थी हमारी आज की सभा। आज की सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रम गीत संगीत आप सभी को कैसे लगे, इस बारे में आप अपने राय सुझाव हम तक पहुंचा सकते हैं पत्र द्वारा हमारे इस पते पर। हमारा पता है वाग रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागधरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9414082643। तो श्रोता साथियों, फिर मुलाकात होगी अगली सभा में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आज की सभा से जाने की। आपके अपने साथी मनीषा पटेल को इसी अनुमति के साथ नमस्कार।